हवा हवाई वी वी वी वी वी वी वी। अरे गाइस मैं आ गई हूँ मेरे रेगुलर आवर में। यस कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ भाई। मैं डैलस से ही आई हूँ, बहुत दूर से नहीं आई हूँ, यहीं से आई हूँ पड़ोस में। बट मैं आ गई हूँ एपी द हिपी, आपकी सबसे न्यूएस्ट बैरी फनेस्ट आरजे अपन एशिया रेडियो 104.9 FM। एंड यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डेलिस। बड़ा एम्बिश भाई, ड्रम रोल तो जरूरत था यार, मतलब ओपनिंग है तो ड्रम रोल तो करना पड़ता है। गाइस कैसे हैं आप, आर यू कीपिंग कूल। बाहर तो बाय गॉड इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। आई डोंट मिस दिल्ली, यू नो वाई, क्योंकि इतनी गर्मी तो दिल्ली में जितनी गर्मी होती है वैसी वाली दिल्ली की गर्मी फील हो रही है अभी डैलस में। ऐसा लग रहा है अगर बाहर आप यू नो 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद क्या, 12 बजे के बाद ही बाहर निकलोगे, ऐसा लग रहा है ग्राउंड के ऊपर से हीट निकल रही है। मेरे को बड़ा मन करता है इस गर्मी में ना कभी अपनी गाड़ी के अंदर कुकीज़ बेक करने का। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट टू सी अगर मैं एक मेटल शीट पैन पे कुकी डो को ऐसे गोल गोल करके काट काट के मैं ऐसे डाल दूंगी तो उसके एक्चुअल कुकीज़ बनेंगे कि नहीं। एक दिन, वन ऑफ दीज डेज, जिस दिन मेरा पागलपन जाग जाएगा पूरी तरह से, तो उस दिन मैं ज़रूर ये एक्सपेरिमेंट करूंगी। तब तक के लिए मैं अपना पागलपन थोड़ा बचा के रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको क्या सुनाऊंगी मैं, मुझे आपको भी तो सुनानी ही होती है ना कुछ मज़ेदार चीज़ें। तो उसी के चक्कर में आज मैं सुबह जिम गई। जैसे ही मैं जिम से वापस आई, माई गॉड, मैंने नहाया धोया, शावर वावर लिया, नहाने के बाद भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं। गाइज मैं मेकअप लगा रही हूँ ना, मेरा मेकअप पिघल रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है मेरे घर के अंदर। और टू बी फेयर मैंने एसी बंद कर दिया था सुबह उठ के, क्योंकि मुझे रात को ठंड लग रही थी तो मैंने सुबह उठ के एसी बंद कर दिया। आई शुड हैव केप्ट द एसी ऑन द होल टाइम, बट आई एम जनरली नॉट अ बिग फैन ऑफ एसी। मुझे एसी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बिना एसी के बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो सही टेम्परेचर भी नहीं मिलता है कि मतलब यू नो एकदम वैसा वैसा रहे। एनी वेज बट दैट्स माई प्रॉब्लम। तो उसी के चक्कर में इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने, आई डिसाइडेड टुडे इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट्स एंड अ टैंक टॉप काइंड ऑफ अ डे। तो मैंने निकाली अपनी ऑरेंज कलर की शॉर्ट्स जो मैंने पिछले साल कॉस्को से खरीदी थी। इट वॉज ऑन सेल फॉर लाइक 10 बक्स, बट यू गाइस इट वॉज लिनन। ओके, आई ओनली वेयर ऑर्गेनिक कॉटन एंड ऑर्गेनिक फाइबर्स। नो आई एम किडिंग, टोटली नॉट। आई ऑल्सो वेयर अ लॉट ऑफ नायलॉन एंड सिंथेटिक, बट आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज लाइक आई हैव माई फर्स्ट पेयर ऑफ लिनन शॉर्ट्स, आई फील सो रिच। So I whipped out my orange colored linen shorts and I put on a shirt on top and I was like, today is going to be a shorts kind of a day. और shorts पहन के ना मैंने शक्ल लगाई अपनी, आईने में मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा यार this is giving शक्ति कपूर फ्रॉम राजा बाबू। आई मीन गाइज यू हैड टू सी दैट पिक्चर। वैसे आप देख सकते हैं, इट्स ऑन माई स्टोरीज इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा। मेरा इंस्टा है IPPI.music इन केस यू वॉन्ट टू सी। आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इन केस यू वॉन्ट टू सी दैट यू कैन सी। ओ माई गॉड आई वॉज लाइक यार ये तो बिल्कुल आई लुक लाइक राजा बाबू, नॉट राजा बाबू, राजा बाबू तो हीरो था, उसका वो साइड किक नहीं था शक्ति कपूर, वो बरमूडा शॉर्ट्स में, एक्चुअली वैसे तो चड्डी थी उसकी स्ट्राइप्स वाली, लेकिन हम उसको शॉर्ट्स ही बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेडियो। और बनियान में वो आया ऐसे करके, वो चार्ली चैपलिन जैसे मूछे लगाई हुई और बैंग्स उसके बड़े इतने सुंदर सुंदर बैंग्स। नाउ इट्स अ ट्रेंडी हेयर स्टाइल यू गाइस, बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट ही वाज गोइंग फॉर। इट वॉज टोटली गिविंग दैट वाइब। तो उसी की खुशी में आज मैं आपको थोड़ा, लेट्स गो बैक इन टाइम एंड लेट्स लिसन टू वन सॉन्ग फ्रॉम राजा बाबू। ओके, बिकॉज यू नो वट गाइज, दैट मूवी वॉज सो फनी, इट वॉज सो रिडिकुलस, इट वॉज सो फनी, इट वॉज द मोस्ट क्रिंजियस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम्स। एंड ऑल द सॉन्ग्स कलेक्टिवली, ऑल द सॉन्ग्स इन दैट फिल्म, दे वर ऑल सो सो सो फनी एंड सो क्रिंज। आई मीन आई डोंट थिंक दर इज वन सॉन्ग दैट डिड नॉट मेक मी लाफ। एवरी सिंगल सॉन्ग वॉज सो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली फैंटेस्टिक।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
3: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
2: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
3: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: Documents या parcel भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर relocate करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी transport करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door to door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
9: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
15: All right, guys, we are back. And this part of the show is brought to you by Shri Krishna Jewelers. At Shri Krishna Jewelers, jewelry is not just an accessory. It is a reflection of tradition, elegance and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds and from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location, 13145, suite number 220, Main Street, Frisco, Texas, at Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished moments since 1967, you guys. Bhai, aapko sona mona khareedna hai? शादी वादी हो रही है किसी की यहाँ पे आज के जमाने में? मुझे तो नहीं लगता आज के जमाने में कोई शादी वादी कर भी रहा है. आई एम श्योर बहुत लोग वैसे कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा डेटिंग लाइफ सबकी लाइफ में थोड़ा सा ऐसे ही ठंडा हो गया, सो इट्स नॉट हॉट एंड स्टीमिंग अनफॉर्चुनेटली. बट कोई बात नहीं, फिर भी आप गहने तो अपने लिए भी खरीद सकते हैं, मेरे को तो बड़ा मन है. एनीवेज, बट इफ यू नीड सम ज्वेलरी, दिस इज वाई यू नीड टू गो. और जैसे मैंने पहले जाने से पहले प्रॉमिस किया था आपको, मैं एक अली सफर का एक गाना सुनाऊंगी. दिस इज फ्रॉम मेरे ब्रदर की दुल्हन एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड मधुबाला एंड इट फीचर्स श्वेता पंडित. गाइज, डू यू नो हु श्वेता पंडित इज? श्वेता पंडित इज द डॉटर ऑफ दिस रियली फेमस क्लासिकल सिंगर कॉल्ड मीता पंडित, एंड उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, इतना ही पता है बस. चलो गाना सुनो.
5: Dang dang dung dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang d

भाई लोगों, बाहर बहुत गर्मी है। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हाइड्रेटेड। इस गर्मी के मौसम में सिर्फ हाइड्रेशन करना काफी नहीं है, मेक श्योर यू गेट योर इलेक्ट्रोलाइट्स इन। ठीक है, खाली पानी से आपकी हाइड्रेशन खत्म नहीं होगी, क्योंकि इतनी धूप में ना हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाते हैं। बचपन में ग्लूकोन डी के ऐड नहीं आते थे भाई? ग्लूकोन डी तो मुझे पता नहीं, अब ग्लूकोन डी नहीं पी, आई डोंट नो, यू कैन हैव दैट बिकॉज दैट्स ऑल्सो हैज इलेक्ट्रोलाइट्स। बट उसके अलावा अगर ग्लूकोन डी नहीं मिला आपको किसी भी इंडियन स्टोर में, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जरूर पानी में डाल के पीजिए। स्पेशली इफ यू आर नॉट ईटिंग वेरी हेल्थी एट होम एंड ऑल ऑफ दैट, आपको अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जरूर करिए। आज इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि इतनी गर्मी है, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, तो मैंने सोचा आज का टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन रहेगा हेल्थ एंड फिटनेस, बिकॉज आई एम रियली रियली बिग ऑन इट। आई हैव बीन ऑन दिस हेल्थ जर्नी फॉर लाइक आई थिंक 2022 से 2022 से नहीं 2023 से मैं अपने हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी पे हूँ, क्योंकि भैया आई हैड पुट ऑन लाइक सो मैनी पाउंड्स। और मतलब अमेरिका आके ना सब मोटे हो जाते हैं। आपको आप हुए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे आके इतना सारा खाना जो मिलता है ना, ऑल दैट पिज्ज़ा पास्ता एंड जंक फूड और सब, ऑलमोस्ट एवरी डे, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और यू हैव टू गो ऑन दैट मील प्लान, दैट काइंड ऑफ अ स्टफ, तो इतना सारा वो गंदा गंदा अनहेल्दी खाना खा के, मैकडोनल्ड्स क्योंकि वो इजी होता है, वो खा खा के, मतलब सब सबको मैंने देखा है कि दे पुट ऑन एटलीस्ट फ्यू पाउंड्स एंड इट्स सुपर अनहेल्दी। इट अफेक्ट्स योर गट, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इट ऑल्सो शोड ऑन माई फेस, गाइस। माई फेस वॉज ब्रेकिंग आउट लाइक क्रेजी एंड आई वॉज लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। देन बाद में रियलाइज हुआ भाई मेरा खाने का सारा गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए आई गॉट लाइक सुपर फिक्सेटेड ऑन माई हेल्थ। मैंने अपने सारे लैब्स वगैरह कराए एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, मेरी इतनी बाली सी उमरिया में आई गॉट टू नो दैट आई हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। ओ एम जी, आई वॉज प्री डायबेटिक। ओ एम जी, एंड मेरी फैमिली में वैसे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली सारी वुमेन जो है ना, अ लॉट ऑफ वुमेन हैव दिस ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा सारी आंटियाँ एक उम्र के बाद वो ऐसे पेंगुइन की तरह चलती है ना, मतलब आपने देखा होगा इंडिया में तो सारे चलती है, तो आई मीन दैट इज लाइक आर्थराइटिस प्रॉब्लम, यू नो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। एनी वेज, वी विल टॉक अ लिटल मोर अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस वेन वी कम बैक, बट तब तक आप ये वाला गाना सुनिए एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस, why don't you call me and let me know? My number is 972-235-5555.

नाइट गाइस, वो गाना था कविता सेठ जी की आवाज में. कविता सेठ, शी इज सच ए फैंटास्टिक सिंगर. शी इज अ सूफी सिंगर एंड शी इज ऑल्सो अ बॉलीवुड सिंगर. अगर आपने उनके गाने नहीं सुने, उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाए हैं. और ये वाला जो गाना था, शी कोलैबोरेटेड विद हर सन कनिष्क सेठ एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटिफुल मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सॉन्ग. रंग सारी नाना, इतना प्यारा गाना था. एनीवेज, That being said, अभी मधुबाला जी, मधुबाला जो गाना बजा था ना थोड़ी देर पहले अली जफर जी का, उनसे मुझे मधुबाला जी की याद आ गई. मैंने कहा यार अभी थोड़ा मूड बन रहा है मधुबाला जी का एक गाना सुनाने के लिए. लेकिन उसके पहले हमने जो बातें शुरू करी थी, विच वॉज बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस. गाइज, यू नो वट आई लाइक टू डू. इफ़ यू आर अ रेगुलर लिसनर, देन आपको पता ही है कि मैं अपने रेगुलर चैनल में और वगैरह अपने रेगुलर शो में जो मैं आती हूँ, मैं कितनी बार रेगुलर बोल सकती हूँ एक एक एक मिनट के अंदर. ये गेम है नहीं, ये गेम बिल्कुल भी नहीं है. बट आई जस्ट रियलाइज मैंने एक मिनट के अंदर कम से कम चार बार रेगुलर बोल दिया होगा. ये पाँचवा हो गया. तो एनीवेज, जो रोज मैं स्लॉट में अपने आती हूँ, यू गाइज नो दैट आई लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ Reddit threads and I like to talk about what's happening on my gram and my Instagram. I'm not a big TikTok person. TikTok mein zyada karti nahi hu. Mujhe TikTok thoda sa silly bhi lagta hai. Plus mujhe uski video ki qualities nahi pasand aati. I don't know. TikTok is not my favorite choice of app. But I do love Instagram. And then my second favorite is of course Facebook pe jo reels aati hai. Kai baar Facebook pe bhi reels dekh leti hu. Fir threads mein bhi bada maza aata hai. Threads mein na log ek dusre ke post pe comment karte rehte hai. It's just typing, it's just a lot of words, but I love reading किसने क्या comment किया है, इसकी threads पे कहाँ से conversation शुरू हो गई है, कहाँ खत्म हुई वगैरह वगैरह. Some of that stuff is so interesting. Some of the garbage that you find on social media is also hilarious. But that being said, पता है मेरे social media पे क्या आता है? Because I'm so big into health and fitness ना, मेरे gram पे my algorithm, you know what it shows me all day long, या तो गाने के रिलेटेड कुछ आएगा, हाउ टू टर्न योर म्यूजिक करियर इनटू ए सिक्स फिगर इनकम, ऐसे करके सम रैंडम पर्सन इज सेलिंग सम रैंडम कोर्स, और हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन जैज. और आई डोंट इवन वॉच मोस्ट ऑफ इट, बट इधर दैट. नंबर टू, कुछ बॉलीवुड बैंड, ये बैंड शैंड लेके कुछ वो आता है, क्योंकि अब बॉलीवुड रेडियो है, बॉलीवुड रेडियो शो होस्ट कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स लाइक दैट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को फिटनेस वीडियोस बहुत आते हैं. अगर मैं अपने इंस्टाग्राम के सर्च बटन पे क्लिक करूँ ना, वहाँ पे देर इज सम गर्ल और सम गाय हु आर ट्राइंग टू वर्क आउट एंड वर्क ऑन देयर ग्लूट्स एंड पंप अप देयर ग्लूट्स एंड दे टॉक अबाउट व्हाट टू ईट, हाउ मच प्रोटीन टू ईट. और मतलब और भी उसके अलावा भी और भी फिटनेस वीडियोज जो आती है, वो आती है अ बंच ऑफ यू नो दीज यंग इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स.

प्रोटीन टू ईट, और मतलब और भी उसके अलावा भी और भी फिटनेस वीडियोस जो आती है वो आती है अ बंच ऑफ यू नो दीज यंग इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप में जितने भी लोग थे हैं रादर नॉट थे हैं वो लोग दे आर दे डोंट दे बेसिकली दे वॉक अ लॉट, कार्डियो बहुत करते हैं लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते और प्रोटीन नहीं खाते. प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन को लेके इतना वो मैडनेस छाया हुआ है. डिड यू गेट योर प्रोटीन इन टुडे, डिड यू गेट योर प्रोटीन इन टुडे, ऐसे करके. आई मीन इट्स काइंड ऑफ वाइल्ड, ऑल दो उसमें काफी सच्चाई है यू गाइज, बहुत सच्चाई है. मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है. आई हैव एक्चुअली लैंडेड अप रिवर्सिंग ऑल माई हेल्थ इशूज विच वॉज आई वॉज डायग्नोज विद लाइक 3 years ago, थैंक गॉड. और मैंने बहुत सारे पाउंड भी कम करे हैं, वाओ. बट उसके अलावा एनीवेज वी विल टॉक मोर अबाउट दिस 8 बजे के बाद, ठीक है? अभी आप एक गाना सुनिए क्योंकि मधुबाला जी से मुझे मधुबाला जी का याद आ गई. और उसके बाद जब हम आएंगे गाने के बाद, देन वी विल टॉक अबाउट सम फिटनेस स्टफ एंड देन यू नो वी विल टॉक अबाउट सम हेल्थ स्टफ जो मुझे मेरे अपने ग्राम पर बहुत दिख रहा है, ठीक है?

वाह गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सच अ प्रिटी सॉन्ग. मतलब पुराने जमाने के जो गाने हैं ना, वो आशा जी और लता जी की आवाज में जब मैं कभी भी सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कोई चिड़िया गा रही है. इतनी पतली सी, इतनी प्यारी सी, इतनी स्वीट सी आवाज में. मतलब मैं तो इतना हाई कभी गा ही नहीं सकती भाई, मेरी आवाज तो बहुत लो है ऐसे करके. मेरी आवाज से बच्चे डर जाते हैं कई बार. एनीवेज, बट अभी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई आतिक जी की, जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं. आतिक जी, ये आपके लिए जाता है. आतिक जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई हमें आपसे इत्मीनान से जब बातें करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं वो बातें. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आतिक जी, अगर आपको मेरे से बातें करनी है या फिर किसी भी ऑडियंस मेंबर को मेरे से आउट ऑफ फनेशिया के जो रेडियो शो के अलावा अगर आप मुझे बातें करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट. और मैं वैसे भी बहुत सारी मेरे अपने आइडियाज़ जो है, जो रेडियो पे हम नहीं शेयर कर पाते, वो अपने मैं पर्सनल पेज पे मैं बहुत शेयर करती हूँ. सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो माई हैंडल इज IPPI.music, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी आई गिव शाउट आउट्स टू माई फेवरेट लिसनर्स, यू गाइस. तो मैं आपके लिए एक पर्सनल मैसेज भी रिकॉर्ड करूंगी एंड आई शेयर ऑन माई स्टोरी इफ यू गिव मी अ फॉलो. बट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड मी ऑन फेसबुक, अगर आप सर्च करेंगे इपी रॉय, IPPIROY, मैं दोबारा बोल रही हूँ, IPPIROY, इपी रॉय, अगर आप मुझे फेसबुक पे ऐड करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो ऐड मी ऑन फेसबुक एंड वी कैन हैव सम रियली नाइस कॉन्वर्सेशन. यू गाइज, यू कैन डीएम मी एंड वील चिट चैट एंड वील हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर देर. यू नो, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बातें वगैरह शेयर कर सकते हैं. तो जरूर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए. आई लव टॉकिंग टू माई फैंस एंड माई फॉलोअर्स. बट उसके अलावा अभी हम थोड़े ब्रेक में जाने वाले हैं. 4 मिनट के अंदर अंदर मैं एक छोटा सा गाना आपके लिए बजाती हूँ एंड उसके बाद हम आएंगे थोड़ी और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करने. ओके okay?

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
5: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
4: क्यों?
5: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
4: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
7: के टू ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
10: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
11: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
12: Hello guys, thank you so much for all the follows and the ads on Facebook. जो नहीं सुन रहे थे, जो जिन्होंने मिस कर दिया है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे रीच आउट करके मुझे बोलते ना कि आपको मेरी बातें इतनी अच्छी लगती है, दैट यू फील सो कंफर्टेबल कि भाई पुराने किसी यार से बातें कर रहे हैं, पुराने किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट, बिकॉज यू नो मुझे बातें करना लाइफ में बहुत पसंद है. मेरी लाइफ में मुझे इतनी बातें करना पसंद है कि भाई मैं इसीलिए रेडियो जॉकी बन गई ताकि मैं आप सबसे सोशलाइज कर सकूं और बात कर सकूं. और सबसे फनी चीज पता है क्या है, मैं आप विश्वास नहीं करोगे, आपको लगेगा कि भाई इप्पी का सोशल सर्कल तो इतना बड़ा होगा. भाई नहीं है मेरा सोशल सर्कल इतना बड़ा. मैं यहाँ पे मैं इतना काम करती हूँ, मैं रोज काम करती हूँ, मैं मंडे टू संडे रोज काम करती हूँ ताकि यू नो मैं अपने आप को बिजी कर सकूँ. मेरे दोस्त जितने भी हैं डैलस में, एक टाइम पे इतने सारे दोस्त थे, वो सब या तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए या एलए शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं अब अकेली रह गई हूँ. पर मेरा डैलस में इतना अच्छा सही काम जा रहा है तो मैं गई नहीं. मैंने कहा यार अब मैं डैलस छोड़ के मैं चली आऊँगी तो काम कौन करेगा. तो भाई आप बने रहिए अभी रेडियो शो पे, क्योंकि हम कुछ 10-15 मिनट बाद हम एक गिव अवे करने वाले हैं. मेरा जो सबसे फेवरेट मोमेंट होता है गिव अवे का, दैट इज गोइंग टू कम. लेकिन उसके पहले एक लिटिल अनाउंसमेंट. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. Oh, and just in case you missed my Instagram handle and my Facebook handle earlier, आप मुझे Facebook पे ढूंढ सकते हैं as Ippi Roy, IPPI, I for India, P for Pakistan, I for India. Okay, Ippi, very easy. Roy, R-O-Y. It sounds like a white person's name, but totally not. ये मेरा ही नाम है, मेरे पापा का नाम है. And my Instagram handle is ippi.music, ippi.music. क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी म्यूजिकल है कि म्यूजिक मेरे नाम में भी है. वाह वाह वाह वाह, शानदार. तो इसी खुशी में आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा गाना गुरु रंधावा का. मुझे गाना बड़ा पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि इट साउंड्स लाइक वन ऑफ डुआ लिपा'स एब्सोल्यूट बैंगर्स. ओके, एंड आई लव बोथ ऑफ दोज सॉन्ग्स, इसीलिए मुझे एक गुरु रंधावा वाला गाना पसंद है. और जब मैं अपने बॉलीवुड शो में अपने बैंड के साथ डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने इतनी बार बताया है, जब उसके साथ व्हेन आई परफॉर्म लाइव विथ माय बैंड, तो हम लोग इसका ना मैशअप करते हैं. वी डू लेविटेटिंग. ओहो, मेरे को गाना का नाम नहीं बताना था, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया. वी डू लेविटेटिंग एंड सिर्रा का मैशअप एंड इट साउंड्स सो कूल. बट एनीवेज, लेट्स टॉक मोर म्यूजिक.

क्या बात है भाई, दूसरे गाने पे नहीं जाएंगे, एक ही गाना, वन सॉन्ग एट अ टाइम, ओके. लेकिन इसके बाद अभी आ रहा है गिव अवे का टाइम. आर यू गाइज लिसनिंग? भाई अगर आपने मेरा शो सुना है पहले या पिछले कुछ दिनों में, अभी सेकेंड वीक ही चल रहा है वैसे तो, रेगुलर आवर में, इस बार एक ही बार बोलूंगी, हाँ रेगुलर. अगर आपने मेरा शो सुना है देन आपको पता ही होगा कि हम लोग एक गिव अवे करते हैं, और वो गिव अवे का यूजुअली मेरा फॉर्मेट ये रहता है कि मैं एक कोई कैसा गाना बजाती हूँ और उसको कॉपी करके हम बॉलीवुड में डालते हैं, तो आपको मुझे बताना होता है कि वो गाना कौन सा है, और उसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन भी होता है, ठीक है. तो ये गाना जो है ये मैं आपके लिए बजाऊंगी. इट इज नॉट, आई थिंक इट्स, हाँ इट इज एन इंग्लिश सॉन्ग, इट इज 100% एन इंग्लिश सॉन्ग. आपको मुझे बताना है कि इस गाने के सिंगर कौन है और ये गाना कौन सा है. डन टन डन, ये वाला गाना नहीं है बाय द वे, बाय द वे डोंट गेट कन्फ्यूज. मैं बजाऊंगी अभी गाना, ठीक है. मैं इंग्लिश वाला गाना बजा रही हूँ. बहुत ईजी है, इट्स सो ईजी यू गाइज. आप तो मतलब गिव अवे जीत ही जाओगे. पर गिव अवे जीतेंगे क्या, मैं वो तो बता दूं. गिव अवे है क्या, इस हफ्ते का गिव अवे है चंडीगढ़ बाइट्स. अगर आपको चंडीगढ़ बाइट्स गए और वहाँ का खाना वगैरह पसंद आया है, विच आई एम श्योर इज लाइक रियली रियली अमेजिंग, देन दिस इज योर चांस टू विन ए कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, एलन वाले लोकेशन पर, ठीक है. तो यू एंजॉय दिस रियली अमेजिंग स्पेशल थाली मंडे टू फ्राइडे विद न्यू डिशेस, जो लंच पे ही अवेलेबल है. लेकिन आप कुछ भी ऑर्डर करिए, साथ में कढ़ाई चिकन या कढ़ाई पनीर आपको फ्री फ्री फ्री. लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर लिसनर्स, ओके. बट ये जरूर याद रखना कि आपने ये वाला गिव अवे पहले नहीं जीता है, स्पेशली चंडीगढ़ बाइट्स का तो ये गिव अवे पहले नहीं जीता है, तभी आप जीत सकते हैं. मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम गिव अवे विनर है दिस मंथ बाय द वे. अगले महीने आप दोबारा ट्राई करिए, उसमें क्या है, हम तो अभी टाइम से रहने वाले हैं, उसमें क्या है, गिव अवे और भी आएंगे. तो हियर गोज, आर यू ऑल रेडी? फोन के पास है कि नहीं, देखिए मेरा नंबर है 9722355555, ठीक है. तो नंबर कीपैड पे रेडी रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉल्स आ रही है, फ्लड हो जाएगा. आपको मुझे बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉलीवुड सॉन्ग, वन. नंबर टू, कौन सी मूवी से लिया गया है, बहुत ही क्लासिक मूवी है, आपको पक्का पता चल जाएगा. एंड नंबर थ्री, एब्सोल्युटली आइकॉनिक, हु इज द सिंगर, नॉट द कंपोजर. टेक्निकली द कंपोजर एंड सिंगर इज द सेम पर्सन, सो आई एम गिविंग यू अ लिटिल हिंट ओवर दैट, ठीक है. इस वाले केस में सिंगर और कंपोजर सेम ही है, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये सिंगर स्लैश कंपोजर कौन है इस वाले गाने का, इन बॉलीवुड, नॉट द ओरिजिनल वन, ओके. तो आर यू रेडी? 3, 2, 1, हियर गोज.

कुबा कहाँ है, हमारे तो कोई नहीं है. कोई बात नहीं, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे. बट हम आज बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, क्योंकि भाई मैंने पहले बारे में ही बोला था बिफोर वी स्टार्टेड द शो की टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इट. एक्चुअली जाते जाते मेरे पहले मिस्टर मार्विन जो थे, मार्विन बिंदास मार्विन जो थे, वो भी उसी बात पे शो खत्म करके गए अपना. लाइक यू नो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वेल्थ इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है, है ना. तो उसी से सबसे पहली चीज, तो आई डोंट नो इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, एनी ऑफ दीज रील्स. लुक गाइज, आई लव माई इंडियन फूड, आई लव माई बटर चिकन, आई लव माई नान. इनफैक्ट आई लव माई बटर चिकन सो मच दैट माई फोन इज एक्चुअली नेम्ड बटर चिकन. जब मैं एयर ड्रॉप से किसी को यू नो फाइल्स शेयर करती हूँ तो कहते हैं वट इज दिस बटर चिकन. मैंने कहा बटर चिकन इज द नेम ऑफ माई फोन यू गाइज. एंड देन गेस वॉट, माई फोन इज कॉल्ड बटर चिकन, माई आईपैड इज कॉल्ड बटर चिकन वर्जन 2, एंड माई एयरपॉड्स आर कॉल्ड बटर चिकन ऑन द गो. दैट्स हाउ मच आई लव बटर चिकन, एंड दैट्स हाउ यू कैन टेल समबडी रियली लव्स देयर फूड. बट दैट बींग सेड, you know, after I got diagnosed with a lot of bunch of health issues, and I was, I had just like barely turned like 30, okay? And I was like, no yaar, I can't have this health issues at this young age. I've just turned 30, so I cannot deal with this. So maine fir I started researching and I really started taking care of my health. I started going to the gym regularly, but भैया gym भी उतना important नहीं है जितना आपका dietary intake है. आप क्या खा रहे हो. मेरे reels पे पता है क्या आता है ज़्यादा से ज़्यादा, that सबसे बड़ी criticism आती है Indian diet की, that Indian diet which we very proudly claim and we say that oh our Indian diet is the healthiest and the best in the world, which to some extent yes, but also it is significantly lacking in protein. हम लोगों को पता है बचपन से ये you know at the back of our head ये हमें feed किया गया है भाई दाल चावल is a very good protein source. भाई दाल में बहुत protein होता है और चावल में तो carbs होते हैं. It's very good. सबसे healthy खाना is दाल चावल. लेकिन भैया आपको अगर actually में पता है दाल में carbs ज़्यादा होती है protein, बहुत कम protein होता है दाल में. और दाल इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोस्टली फाइबर. सो वाइल दाल इज लाइक सुपर हेल्दी, आई लव लेंटल्स, आई लव माई मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल एंड माकी दाल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन दाल में भैया प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको. और हमारे जो बुढ़ापे में जितने भी हमारे अंकल आंटीज जो सारे हैं ना, आप देखोगे कि भाई बचपन, मतलब बचपन में तो ना खैर, यंग उम्र में दे आर ऑल वेरी हट्टा कट्टा, बॉडी पे उनके मसल मास वगैरह होती है, लेकिन 60 के बाद ना सडनली यू विल सी दे हैव श्रंक, दे हैव ऑल बिकम सो स्किनी. सिर्फ हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर स्किन लगी है. मतलब कितने सारे दे लूज सो मच वेट, एंड वो पता है वेट क्यों लूज करते हैं, बिकॉज द लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, सो दे कांट मेंटेन द मसल यू गाइज. तो पता है क्या होता है, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है, बॉडी में मसल मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है. अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं गया आपके, तो वो मसल मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी को अपनी एनर्जी सस्टेन करने के लिए पहले तो वो फैट्स खाना शुरू कर देंगी, विच इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि आप यू नो यू गोना लूज सम फैट एंड बॉडी फैट इज प्रीटी गुड टू लूज, यू नो इट कीप्स यू हेल्दी. बट उसके बाद जब फैट भी खत्म हो जाएगा, देन द बॉडी स्टार्ट्स ईटिंग मसल, क्योंकि आप उसको प्रोटीन नहीं फीड कर रहे हो तो वो मसल को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो मसल खाने लग जाता है. उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपका मसल लॉस कम हो गया, आपकी हड्डियों के आसपास जो एरिया था जो मसल आपको स्ट्रेंथ देता था, बिकॉज मसल एक्चुअली हेल्प्स यू गिव स्ट्रेंथ टू द बोन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स इट. सो अगर आपकी इंजरी या फॉल वगैरह उस तरह से होती है, तो एक एज के बाद यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग फ्रैक्चर्स. और आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे मेरी मम्मी बाथरूम में गिर गई, उनके पीठ में दर्द हो गया, एंड देन वो बेड, शी वॉज बेड रिडन फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. लेकिन जब यंग उम्र में ये सब नहीं होता, ठीक है, बाथरूम में गिर गए फिर वापस खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि उनके बोन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है एक एज के बाद. तो मसल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उस मसल को मेंटेन करने के लिए यू नीड योर प्रोटीन सोर्सेज. तो गाइज उसको इग्नोर मत करिएगा, प्लीज सपोर्ट दैट. एंड सेकेंडली डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो इज अमेजिंग. कार्डियो से अगर आप ऑन द हैवियर साइड हैं, देन कार्डियो इज रियली अमेजिंग टू बर्न दोज कैलोरीज एंड गेट यू इन शेप. बट इफ यू आर यंग एंड इफ यू आर काइंड ऑफ फिट,
then you need more strength training to help you maintain that muscle mass after a certain age rather than cardio. तो इसी बात पे एक गाना सुनते हैं, फिर बातें बाद में करेंगे. ओके, थैंक यू.

0: Anyways, this next part of the show is brought to you by Connecting America. With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call 321-888-7345 or visit ConnectingAmericaFinancials.com and start earning your daily expense into income. Start turning your daily expense into income.
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
5: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
9: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
10: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
11: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next bestsellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: And एंड गाइज वी आर बैक. मैं आपकी सबसे फेवरेट द ओनली बैडी आरजे, नॉट द ओनली, आई एम श्योर देयर आर अदर्स, बट आई एम द ओरिजिनल ओजी बैडी आरजे ऑफ फन एशिया, वेयर वी से लॉट्स ऑफ रियली कंट्रोवर्शियल थिंग, नॉट सो मच बट व्हाटएवर, बट वी डू हैव ओपिनियंस एंड वी हैव स्ट्रांग ओपिनियंस एंड वी हैव आइडियाज एंड वी आर नॉट अफ्रेड टू शेयर इट. ओके, इट इज अनफिल्टर्ड, little bit filtered. Okay, everything is in within guidelines, let's just say that. Anyways guys, kaisi chal rahi hai aapki Wednesday ki shaam? Bhai meri to yahan studio mein chal rahi hai, achhi chal rahi hai, kyunki abhi se aapse baatein karte karte maine fatafat apna dinner bhi kar liya. Bhai dinner time is very very important. It is aisa nahi hai waise, aap अगर आप रिसर्च करोगे ना, हम लोग आज बात कर रहे थे हेल्थ एंड फिटनेस की, उसमें उसके रिगार्डिंग अगर डिनर टाइम की बात करें तो कई जगह पे आपने सुना होगा कि नहीं नहीं 8 बजे के पहले डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह. भाई पता है वो एक्चुअली उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि अगर आप 8 बजे तक खा लेते हो और उसके बाद आप कुछ नहीं खाते हो, अगले दिन 8 बजे तक सुबह तक ब्रेकफास्ट तक आप नहीं खाते हो, तो एक वो तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है. और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सुपर सुपर ग्रेट टू रीसेट योर इंसुलिन एंड योर शुगर एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स रियली ग्रेट वे टू काइंड ऑफ लाइक रीसेट योर बॉडी एंड यू कैन स्टार्ट ऑल द वे फ्रेश ऑन द नेक्स्ट डे. बट दैट बींग सेड, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, पता है क्या, कभी आपको मतलब वो वाला राजमा चावल या अच्छे से छोले चावल या फिर दाल चावल या फिर भाई इतना सारा चावल चावल, आई लव चावल, ओके, आई एम बंगाली, आई लव माय चावल, ओके, वो सब खा के एक बहुत ही दवा के नींद नहीं आती? संडे की दोपहर को हम चावल खाएंगे और फिर राजमा चावल खाएंगे, पेलेंगे एकदम प्लेट भर के, दो दो सर्विंग्स लेंगे, वाह वाह वाह, साथ में थोड़ा सा अचार और प्याज होगा और उसके बाद हम सो जाएंगे. वो होता है ना कई बार बहुत सारे चावल खा के या हैवी एक लंच करके नींद आती है, वो पता है क्यों आती है? दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ योर शुगर स्पाइक. यू गाइज, ये अगर आपको नहीं पता शुगर स्पाइक क्या चीज़ होती है, शुगर स्पाइक वो होती है कि अगर आपने अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं किया काफ़ी देर तक, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी बॉडी को एक बहुत कार्ब हैवी मील देते हो, कार्बोहाइड्रेट हैवी मील देते हो, जैसे कि राजमा चावल, ठीक है, अगेन लाइक वी वर टॉकिंग, राजमा चावल, छोले चावल, दीज चावल तो कार्बोहाइड्रेट्स होते ही हैं, राजमा भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बीन्स किसी भी तरह के वो मोस्टली कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन थोड़ा कम होता है उनमें, बट फाइबर बहुत होता है, भरपूर फाइबर होता है, सो दे आर ओवरऑल अ वेरी हेल्थी थिंग, बट वो बैलेंस करना चाहिए. आप सोच रहे हो कार्ब के ऊपर आप कार्ब खा रहे हो, साथ में एक आलू की सब्जी होती है और कार्ब्स आ रही है, तो भाई प्रोटीन कहाँ है? उसके अलावा तो और कुछ आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है. तो उसके बाद जो नींद आती है ना, वो इसीलिए होता है कि आपका शुगर इतना बढ़ चुका होता है दैट योर बॉडी इज अनएबल टू हैंडल एंड सडनली वो क्रैश कर जाता है उसके बाद. सो आई बीन वॉचिंग दीज अमेजिंग वीडियोज ऑफ दीज गाइज. देर इज अ पर्सन फ्रॉम अमेरिका हु ऑल्सो डज दिस. एक इंडियन बंदा भी है जो इंडियन फूड को लेके करता है, कि वो अपने पेरेंट्स को लेके करता है कि भैया पेरेंट्स को हम क्या खिलाएंगे तो उससे उनका शुगर स्पाइक नहीं करेगा और ये नींद नहीं आएगी. जब आपको ये वाली शुगर स्पाइक नहीं होगी ना, आप रियलाइज करोगे आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द डे एंड बेसिकली यू डोंट वॉन्ट दैट. सडनली आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए और वो एक घंटे के लिए आई एंड वो खत्म हो गई. वी डोंट वॉन्ट दैट. वी वॉन्ट कि आपकी एनर्जी सस्टेन रहे सो यू कैन एक्चुअली मेटाबोलाइज योर फूड सो मच बेटर. ओके, एंड देन यू हैव दैट बर्न्स फूड रियली वेल एंड यूर ओवरऑल रियली हेल्थी एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फैट लॉस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट लॉस. तो मेरे को ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज मैं मेरा काम हमेशा ना दोपहर को होता था, सो आई वुड ईट लाइक दिस कार्ब हैवी मील एंड जैसे ही मैं ड्राइव करी होती थी I-35 के ऊपर, जैसे ही मैं लुइसविल से निकली ड्राइव करके I-35 पे, मेरे को इतनी नींद आती थी ड्राइव करते हुए, इतनी नींद आती थी ना दोपहर के 2 बजे, एंड आई वाज लाइक यार मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, लाइक मेरी आंखें खुली नहीं रही थी एंड इट्स रियली अनसेफ, यू नो, इमेजिन यू आर ऑन 35 और इतनी चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है और वहां पे आपको नींद आ रही है ट्रैफिक में, कैसे हो सकता है? देन व्हेन आई चेंज माय डाइट एंड आई स्विच टू अ मोर हैवी प्रोटीन डाइट, जैसे अब मेरे खाने में क्या जाता है, मैं लंच में घर से निकलने से पहले ना मैं 2 अंडे लेती हूँ साथ में हाफ अ कप ऑफ एग वाइट्स. ऑल ग्रोसरी स्टोर्स हैव दिस कार्टन एग वाइट्स. इट्स एक्चुअली प्रीटी हेल्दी. यू शुड गो चेक इट आउट. अगर आपको प्रोटीन बूस्ट करना है, ईजिएस्ट वे टू डू इट, दो अंडे डालो, उसमें हाफ अ कप ऑफ एग वाइट्स डालो, कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह डाल दो उसके साथ फेंट के, या तो उसका स्क्रैम्बल बना लो, ऑमलेट बना लो, जैसे भी डाल दो. और उसके साथ में एक सीड ब्रेड. What is a seed bread? Seed bread is that kind of a toast which is heavy in like seeds, like flax seeds वगैरह डाल के, अलसी वगैरह डाल के वो बनती है वो ब्रेड. उसको ऑल्डी, जहाँ पे इज माई प्रेफर्ड स्टोर, वहाँ पे उसको प्रोटीन ब्रेड बोल के बेचते हैं, विच इज़ लो इन कैलोरीज एंड रियली हाई इन प्रोटीन एंड ओनली लाइक 10 grams ऑफ कार्ब्स. इट इज सुपर सुपर डिलिशियस एंड वेरी वेरी हेल्थी. सो आई गेट दैट वन. और उसके बाद मेरी एनर्जी ना इतनी सस्टेन्ड रहती है, मैं रेडियो शो आगे रेडियो शो भी कर जाऊं, मेरी एनर्जी नहीं डिपोगी. इट्स सो अमेजिंग. सो भाई, दीज आर सम रियली स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर डाइट टू हैव ए हाई प्रोटीन मील एंड कीप सस्टेन्ड लेवल ऑफ एनर्जी. एनीवेज, लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक.

एंड वी आर बैक. तो एनी वेज, हम बात कर रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दैट. मैं आपके लिए ना वो क्रिएटर का नाम ढूंढ रही थी, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा. मेरे को ना सेव कर लेना चाहिए हर चीज़ आजकल. मेरे को जो मज़ेदार लगती है कि अरे मुझे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, मैं तो स्क्रीन शॉट लेकर रख देती हूँ कि यू नो आई एल विप आउट माई फोन इन द मिडल ऑफ माई शो एंड देन आई एल शेयर इट विद माई ऑडियंस. एनी वेज यू गाइज, आप मुझे कॉल करके बताइए इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशूज और हेल्थ कंसर्न्स. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट वी कैन स्टिल टॉक अबाउट इट एंड वी कैन स्टिल डिस्कस एज एन इंडियन. इज देयर एनी थिंग दैट यू आर फीलिंग कि ऐसे आपके इंस्टाग्राम पे हेल्थ रिलेटेड क्या आ रहा है? When I got diagnosed with all my health issues and stuff like that, I was like, "Bhaiya, I need to lose like a lot of weight and like fix everything, fix my gut and all." So I got into the gym and I started actively strength training. मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. और जिम जाके ना शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है कि OMG, मैं जिम जाऊंगी, चार लोग मुझे देखेंगे, क्या समझेंगे, आई एम गोइंग टू लुक सो स्टूपिड, यू नो प्रिटेंडिंग टू डू समथिंग दैट आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू. बट यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस यू गाइस. इट्स वी थिंक इट्स ओवरवेलमिंग, लेकिन उतना ओवरवेलमिंग है नहीं. सब अपने अपने वर्कआउट में ही बिजी रहते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी नहीं. बल्कि आपको चार लोग आके मदद कर देंगे अगर इफ दे ट्राई एंड फिगर आउट कि अच्छा ये बंदा तो या बंदी जो भी है इसको ये मशीन समझ में नहीं आ रही है, तो आप किसी से पूछो कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं. वो आके आपको हेल्प कर देंगे, भैया इसको ऐसे करते हैं, इसके वेट्स ऐसे सेट करते हैं, एंड देन दिस इज हाउ यू गेट योर सेल्फ इन शेप. एंड देन दे विल बी लाइक, एंड इट्स अमेजिंग द कम्युनिटी दैट यू कैन बिल्ड एट अ जिम इज लाइक सो गुड बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर हेल्थ. कोई आपको एडवाइस भी देगा. एक तो मेरे साथ बड़ी सही सिचुएशन हुई. सो आई हैड बेसिकली स्टार्टेड माई जर्नी अ फ्यू ईयर्स अगो, एंड उसके बाद मेरे को कॉमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे दोस्तों से, कहते हैं भाई आई फील द सेम वे जब मैं जिम जाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाती क्योंकि आई फील सो कॉन्शियस. भाई कॉन्शियस फील करने की जरूरत नहीं, आप जाओ. एंड ट्रस्ट मी, people are so busy in their own workouts, they don't really care. Nobody cares, I promise you. It's a very, very, very judgment-free zone. आप कुछ भी पहन के जाओ, कुछ भी करो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा. सब अपने काम में बिजी रहते हैं. इनफैक्ट सब अपने नौकरी से आधा आधा घंटा जितना भी टाइम निकाल पाए वो आते हैं. चाहे कभी भी आप जाओ, दोपहर के 11 बजे जाओ, सुबह के 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, हमेशा कोई ना कोई लोग वहाँ पे रहते हैं. ऐसा कभी टाइम नहीं होगा जो लोग नहीं रहेंगे. और लोग आर वेरी हेल्पफुल, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ. एक बार ना, तो जैसे मैंने अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करी विच वॉज बैक इन 2023, मुझे ना कुछ नहीं आता था. तो मैंने ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के शुरू किया कि अच्छा इस मशीन को ऐसे यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हैक स्क्वाट, इसको बोलते हैं चेस्ट फ्लाई, इसको बोलते हैं लेग प्रेस मशीन, ऐसे करके ना मैंने नाम वाम सीख लिए. फिर मैंने कहा अच्छा ये वाली मशीन ये वाले मसल ग्रुप पे काम करती है, ये वाली मशीन ये वाले मसल ग्रुप पे काम करती है, ऐसे ऐसे करके आई ट्राई एंड फिगर्ड आउट कि अच्छा व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन. एंड आई डिडंट इवन नो व्हाट आई वांटेड टू वर्क ऑन, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग. कुछ भी जाके 15 मिनट ही क्यों ना करो, कुछ तो मैं करके आई. तो मैंने कहा चलो, आई फेल्ट गुड कि नहीं यार कुछ तो किया मैंने आज, आई डोंट फील लाइक अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई डिड समथिंग एटलीस्ट. सो देन ऐसे करते करते मैंने मतलब धीरे धीरे करके आई डिडंट इवन रियलाइज आई स्टार्टेड लूजिंग द फैट एंड लूजिंग द वेट. साल हो गया, दो साल हो गया, मतलब एंड आई वाज, इट वाज फाइन. मैंने ज़्यादा कुछ डाइट में भी उतना कुछ नहीं चेंज किया था. मैंने जो चावल खा रही थी मैंने थोड़े से चावल कम करे. बाकी वीकली मैं अपने पिज्जाज भी खाती थी, अपने बर्गर्स भी खाती थी, एंड मुझे मीठा जो बहुत पसंद था वो मैं आई अलाउड माई सेल्फ टू ईट माई मीठा ओनली लाइक वंस अ वीक और समथिंग. ऐसा नहीं रोज बैठ के चॉकलेट खा रहे, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बट हफ्ते में एक दिन आई अलाउड माई सेल्फ.

चलो आज वी विल डू अ चीट डे और वट एवर इट इज, ठीक है. पर पिछले एक साल में आई हैड बेसिकली रीच्ड अ प्लेटो. ठीक है, आप शुरू में जब आप जाओगे आप देखोगे फट से बहुत जल्दी जल्दी आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड इट्स फील्स अमेजिंग. फिर एक टाइम के बाद ना आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उससे, देन योर बॉडी नीड्स टू बी चैलेंज्ड. जस्ट लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, वी गेट यूज टू एवरीथिंग, वी गेट कंफर्टेबल एंड देन यू नीड टू लाइक चैलेंज योर सेल्फ कि भाई नाउ आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, नाउ आई नीड टू इंक्रीज इट. देन आई गॉट अ लिटिल बिट मोर सीरियस अबाउट माई कैलोरी इनटेक, सो आई स्टार्टेड काउंटिंग माई कैलोरीज. और फिर मैंने कहा फिर भी नहीं हो रहा काम, फिर भी नहीं हो रहा, कैलोरी मैं काउंट कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा. फिर मेरे को ना एक फ्रेंड, मेरा न्यू फ्रेंड बन गया, दिस वाइट पर्सन, हिज नेम वॉज ब्लेक. एंड मैंने ब्लेक से बात करी, मैंने कहा भाई तुम तो मतलब यू आर सो एथलेटिक, तुम रोज आते हो जिम, मैं देखती हूँ कभी यहाँ भाग रहे हो, कभी वहाँ भाग रहे हो, कभी पुलअप्स कर रहे हो, लाइक यू नो. एंड ही वाज लाइक अच्छा आई दैट्स बिकॉज आई हैव माय ओन जिम, मैं तो ये वाले जिम में आता हूँ सिर्फ अपने पीसफुली वर्कआउट करने, बट आई एम अ ट्रेनर एट माई ओन जिम. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे पास ना ये सवाल है, मैं आई लॉस्ट लाइक अराउंड 20 pounds लाइक शुरू शुरू में, नाउ आई एम स्टक एट अ प्लाटो, कुछ चल ही नहीं रहा है, आई डोंट नो वॉट टू डू, आई एम डूइंग सो मच, मैं खा भी कम रही हूँ इतना, मैंने मीठा वीठा सब बंद कर दिया, वट डू आई डू. सो देन ही वॉज लाइक अच्छा वॉट इज़ योर डायट लाइक. तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं हाई प्रोटीन डाइट लेती हूँ, सुबह मैं ब्रेकफास्ट एक्चुअली कई बार स्किप भी कर देती हूँ, मैं लंच में 2 अंडे विथ एग वाइट जैसे करके सीट ब्रेड लेती हूँ, और फिर शाम को मैं आई एम टीचिंग माई लेसन, उसके बीच में मुझे ना बड़ी भूख लगती है, सो देन आई हैव सम फ्रूट्स, आई कीप लाइक 3-4 fruits बिकॉज मुझे बहुत भूख लगती है शाम को, एंड देन रात में देन आई हैव माई डिनर अराउंड 7 o'clock और whatever. अगेन विद चिकन ब्रेस्ट एंड यू नो थोड़े से चावल एंड सब्जी, आई ऑलवेज कीप सब्जी चावल के साथ. तो वो कहते हैं कि नहीं आप एक चीज़ गलत कर रहे हो. मैंने कहा क्या? कहता है आप जो शाम को जो फ्रूट खा रहे हो ना उससे आपका शुगर स्पाइक होता है बहुत. मैंने कहा अच्छा? कहते हैं उससे शुगर स्पाइक पता क्या होता है, बिकॉज फ्रूट्स आर फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स, फ्रूट्स आर ग्रेट वेन यू हैव टू गो एंड वर्कआउट इन द जिम, क्योंकि आपको वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो यू कैन बर्न इट ऑफ रियली फास्ट. बट अगर आपकी सेडेंटरी, अगले एक घंटा आपका सेडेंटरी काम है, जैसे आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, लेसन्स करा रहे हो, बैठ बैठ के पियानो सिखा रहे हो, गाना गा रहे हो एंड ऑल दैट, देन द फ्रूट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट विल स्पाइक अप योर शुगर, वन फटाफट वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आपको और भूख लगेगी. You need a protein source in that hunger span that you get around 4-5 baje. तो आप अपनी गाड़ी में प्रोटीन शेक रखा करो. तो फिर मैंने तब से प्रोटीन शेक रखना शुरू किया. मैंने कहा अच्छा ये अच्छा है. तो उन्हें बोला प्रोटीन शेक रखो या दही रखो या लस्सी रखो, वो भी चलेगी, बिना चीनी वाली लस्सी, छाछ बाय द वे. तो वैसे आप कुछ रखो जो विच इज़ ईजी टू हैव एंड ऑल दैट. मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे प्रोटीन शेक मिल गया, जीरो शुगर वाला प्रोटीन शेक, आई लव्ड इट. एंड गाइज यू वॉन्ट बिलीव इट, एक महीने के अंदर अंदर मेरे 5 pound कम हो गए ऐसे, जस्ट एक चेंज किया मैंने, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. अभी भी मैं हफ्ते में एक दिन अपने चॉकलेट्स खा रही हूँ, जिस दिन मन करता है मैं पिज्ज़ा खाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ कभी मन होता है, जैसे मैं संडे को गई, आई हैड माई चाय एंड समोसा विथ माई गर्लफ्रेंड्स एंड इट वॉज सो ग्रेट बिकॉज मैंने ज़्यादा कुछ डाइट चेंज नहीं किया, आई जस्ट फिक्स्ड वन टाइनी लिटिल थिंग एंड इट वॉज लाइक मैजिक. Anyways, I think that was too much talking. Let's listen to a song and then come back and talk some more. Call me if you have any health related issues and maybe mere paas uske liye sawal ho jawab hoga kyunki maine shayad wo already kiya hua hai aur agar nahi hai to maybe we can throw it out to other members in the audience, maybe there are some medical professionals who can help us, right?

गाइस कितने डीप लिरिक्स हैं ये. गंगा तीरथ क्या है जब मैले से मन को ना साफ किया. ये गाना आप सुन रहे हैं शिल्पा राव का, और शिल्पा राव की आवाज़ में है ओरिजिनली. वैसे ये गाना आदित्य बिलानी और सुहेल का है, और द सॉन्ग इज कॉल्ड जिंदगी. आई लव द सॉन्ग. शिल्पा राव अमेजिंग बॉलीवुड सिंगर. लेट्स गो बैक टू द सॉन्ग.

0: Guys, we're about to go into a break in about 5 seconds, but aap bane rahiye. We're going to start our last hour.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
7: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
13: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
0: Hello, guys. Thank you for listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Hanji, Hanji, thank you for tuning in. इतनी रात को भी 9 बज चुके हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे जो लिसनर्स हैं वो कॉल करके मुझे बड़े मतलब हक से पूछते हैं, भाई आप कौन बोल रहे हो? हम तो फन एशिया को बहुत सालों से सुन रहे हैं, पर आप बोल कौन रहे हो? तो आप सब के लिए, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया या जो मेरा शो पहली बार सुन रहे हैं, गाइज, दिस इज मी, इपी द हिपी, द न्यूएस्ट बैडी आरजे हियर एट फन एशिया रेडियो. हांजी हांजी, आई एम द ओजी दिल्ली गर्ल, बिल्कुल साउथ दिल्ली वाले, हरी वाली फूल गोभी खाने वाली लड़की. कुक भैया, मेरे लिए हरी वाली फूल गोभी बना दीजिए. वही सेम वाइब, ओके. तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लवली कॉल्स. अगर आपको और भी कुछ बोलना है, ज़रूर मुझे कॉल करिए. आई लव लिसनिंग टू माय लिसनर्स, बिकॉज यू नो दैट शोज मी कि आप भाई ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं, यू आर एक्टिवली लिसनिंग. आप एक्टिवली सुन रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई लव इट. माई नंबर इज 9722355555. और अगर रेडियो के बाहर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, विच इज अगर आपको मेरी बातें इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि भैया सिर्फ 3 घंटे मंडे टू थर्सडे इज नॉट इनफ, यू स्टिल वॉन्ट टू चिट चैट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, देन प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर यू कैन एड मी ऑन फेसबुक इज वेल. यू माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ippi.music, विच इज इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया डॉट म्यूजिक, ठीक है, और इंस्टाग्राम. एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड मी ऑन फेसबुक इट्स इपी रॉय, अगेन इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ओके, दैट रॉय एट इन एट नहीं बस इपी रॉय ऑन फेसबुक. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा. मैं अपना ईमेल आईडी बोलने चली थी जबकि ईमेल आईडी मेरा वैसे है भी नहीं, FYI. एनीवेज गाइस, बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस जर्नीज, यू नो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे. कुछ मैं क्रिएटर्स का नाम भी ढूंढ रही थी जो अपने पेरेंट्स को लेके ही वॉज डूइंग लाइक दिस टेस्ट कि क्या चीज़ आपको आपकी इंसुलिन क्या स्पाइक करता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई फाउंड वॉज ही डिड दिस टेस्ट विद फ्रूट. फ्रूट जो हम सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है, विच इट इज हेल्दी बाय द वे गाइज, इट हैज़ लॉट्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स एंड इट्स लाइक हैवी इन फाइबर एंड इट्स लाइक न्यूट्रिएंट डेंस. फ्रूट्स आर ग्रेट एंड दे आर ऑल्सो रियली रियली लो ऑन कैलोरीज, बट फ्रूट्स ऑल्सो स्पाइक अप योर शुगर. उसमें से जो कम शुगर स्पाइक करते हैं वो होते हैं ग्रीन एप्पल्स. अगर आप ग्रीन एप्पल खा रहे हो तो वो उतना शुगर स्पाइक नहीं करते क्योंकि उसमें एक्चुअली शुगर्स एज सच कम होती है, लेकिन वो भी स्पाइक करता है. तो ही डिड दिस, मैं नाम भूल रही हूँ क्रिएटर का. जब अगर कल मुझे याद आ जाएगा ना तो कल मैं जरूर बताऊंगी रेडियो शो पे. देन यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग. वो ना एक ग्लूकोज मॉनिटर लगाता है अपने पेरेंट्स के हाथों में जस्ट टू ट्रैक ऑल ऑफ दिस. एंड सो व्हेन ही डिड दिस वन टेस्ट इट वाज बेसिकली लाइक अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई आम खाते हैं, वी ऑल लव आम, आम का सीजन है, क्यों नहीं खाएं, बिल्कुल खाना चाहिए. कई बार हम लोग खाली पेट खा लेते हैं स्नैक में. तो उसने देखा खाली पेट जब आम खाते हैं तो शुगर स्पाइक इतना बढ़ जाता है एंड द पेरेंट्स हिज पेरेंट्स दे वर फीलिंग मोर लथार्जिक मोर लेजी लो ऑन एनर्जी और फटाफट से आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा भूख लग गई उनकी क्योंकि वो आम तो फट से डाइजेस्ट हो गया. तो देन दे रियलाइज कि अच्छा दिस इज नॉट रियली गुड बिकॉज शुगर स्पाइक सो मच इट क्रिएट्स इम्बैलेंस अगेन यू नो. सो वॉट ही डिड द नेक्स्ट टाइम वॉज मिक्स दैट फ्रूट, आम को मिक्स किया उसने एक कटोरी दही के साथ क्योंकि दही इज अ प्योर प्रोटीन सोर्स यू गाइज. दही इज सुपर सुपर सुपर गुड अगर बिना चीनी के, मतलब चीनी नहीं डाल सकते नहीं तो उसका पूरा फायदा खत्म हो जाएगा. तो आप आम या कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं और उसको थोड़ा सा दही के साथ खाते हैं, ग्रीक योगर्ट या एनी अदर नॉर्मल प्लेन योगर्ट के साथ खाएं, या फिर अगर आप उसका फ्रूट चाट बना के खाएं विच इज़ वेरी पॉपुलर बाय द वे इन इंडिया, राइट सर, ये सारी शादियों में फ्रूट चाट मिलता ही है. उसमें आप डालिए नट्स वगैरह डाल के, एकदम थोड़े से काजू, थोड़े से आमंड, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स वगैरह डाल के आप उसको चाट वैसे बना के खाइए. देन उससे शुगर स्पाइक बहुत ही कम होता है. द एनर्जी इज सस्टेन एंड यू डोंट इवन फील हंग्री विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स. देन दैट फ्रूट एक्चुअली डज द वर्क और आपके पेट में रहता है फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो आवर और 2 hours एंड इट कीप्स यू फुल and it's really really good. So the moment I heard that I was like, oh, that explains everything, you know, that makes a lot of sense. So aajkal main pata hai kya karti hu, before going to the gym gym jaane ke aadhe ghante pehle, then I will have my fruit because then kyunki wo fast digest hoti hai, right? और आई कैन कम्प्लीटली यूज़ दैट अप इन माई वर्कआउट्स क्योंकि फिर मेरी माई वर्कआउट्स आर लाइक रियली नाइसली फ्यूल्ड. अगर फ्रूट खाने के बाद अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका वो सस्टेन नहीं रहेगा. एनीवेज, इनफ ऑफ ज्ञान, थोड़ा गान भी हो जाए. ज्ञान तो बढ़ता रहेगा, अभी गान बांटते हैं थोड़ा सा. थोड़े गीत सुनते हैं प्यारे प्यारे. ये इला अरुंधी ओरिजिनल रॉक स्टार ऑफ बॉलीवुड. आई फील लाइक शी इज सो अमेजिंग. चाहे उनके ओरिजिनल गाने हो या फिर चाहे उनके क्या बोलते हैं बॉलीवुड के गाने हो, दे आर ऑल सो गुड. दिस इज इला अरुंधी का नॉट सो पॉपुलर सॉन्ग बट आई स्टिल लव इट. इट इज सो गुड.

गाइज, आपको चुनरी चुनरी का नया वाला वर्जन पसंद है या पुराना वाला पसंद है? आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू जिमरान, जिन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया. वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि विच इज द बेटर वर्जन. एंड ऑनेस्टली, फ्रॉम माई ट्रेनिंग ऑफ बींग ए सोशियोलॉजिस्ट, यू नो, एंड फॉर माई 5 years ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डूइंग सोशियोलॉजी, रिमेंबर मैंने कुछ दिनों पहले आके बोला था, वेल, देर इज नो गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, इट इज जस्ट डिफरेंट. देर आर सम पीपल हु लाइक दिस वन एंड फॉर वट एवर रीजन, एंड देर आर सम पीपल हु लाइक द ओल्डर वर्जन फॉर वट एवर रीजन, एंड एवरी रीजन इज जस्टिफाइड, बिकॉज दीज बैड एंड गुड यू गाइज आर सब्जेक्टिव ओपिनियंस, दे आर नॉट टेक्निकल एनालिसिस. अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में जाएं, वो अलग चीज है, वो साइंटिफिक डिस्कशन में जाती है, वो ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हो जाती है, पर ये हम साइंटिफिक नहीं है, ये है सब्जेक्टिव ओपिनियंस. भाई ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा बुरा है, तो वो अलग बात है ना. तो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग बैड और गुड इन दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप कौन से लेंस से देख रहे हैं. आर यू वेयरिंग रोज कलर्ड ग्लासेस और आर यू वेयरिंग रेबैन के काले काले वेफेयर वाले चश्मे? Right? It doesn't matter. But let us go back, wind down, let's listen to the song and come back and talk some more.

0: anyways, guys, we are about to go into a little bit of break, but break ke pehle jaane se pehle, we were talking about health and fitness. And you know what's one of the most important things about health and fitness? Guys, your sleep. भाई सोना बहुत जरूरी है. अगर आप सोओगे नहीं तो बॉडी नहीं रिकवर करती है. चाहे आप कितनी भी डाइट कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, यू नीड योर स्लीप. एंड फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, इन द लास्ट टू इयर्स एंड एवरीथिंग, माय कॉर्टिसोल लेवल हैज बीन सो हाई. और ये मुझे पता है क्यों पता चला? एवरी नाइट आई वॉज वेकिंग अप बिटवीन 3 and 4 o'clock एवरी नाइट कंसिस्टेंटली. और उसके बाद मेरी नींद टूट जाती थी, फिर मुझे 2 घंटे तक फिर नींद नहीं आती थी, फिर मुझे मेडिटेशन वीडियोस लगाने पड़ते थे यूट्यूब पे, फिर मैं उसको सुन के समहाउ कभी कभार सो जाती थी, कभी नहीं भी सोती थी. एंड आई वाज जस्ट लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि 3 से 4 बजे के बीच में क्यों नहीं आती है नींद. मैंने मम्मी को बोला, अपनी मम्मी ने बोला, पता है आपको सुपरस्टिशन में ये माना गया है कि अगर आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच में टूटती है तो ब्रह्मा जी आते हैं, मतलब ब्रह्मा जी आपके सपनों में आ रहे हैं तभी आपकी टूट रही है. मैंने कहा ब्रह्मा जी आ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता अभी, पर मेरी नींद जरूर टूट रही है और मुझे नींद तो नहीं आ रही है. फिर कहीं और सुपरस्टिशन में बोलते हैं कि अगर 3 से 4 बजे के बीच में आ रही है तो चुड़ैल आ रही है. मैंने कहा आई डोंट नो विच चुड़ैल इज कमिंग फ्रॉम विच साइड, बट नींद तो नहीं आ रही है. कुछ भी हो जाए नींद आ जाए. एंड इट वॉज सच अ प्रॉब्लम फॉर मी for the longest time. And then कभी कभार मेरी नींद आ जाती थी, and I used to be sleep deprived and functioning through the rest of the day with like half asleep and all that. Then I started adding something after I spoke to one of my friends. She said her doctor recommended her to start taking magnesium. You know, there are some people who take CBD and you know all kinds of things to just fall asleep. But you guys, why we wake up in the middle of the night is because your nervous system is probably not relaxed and your cortisol is like, is your stress hormone basically. तो आपको पता नहीं है आपका stress hormone इतना high है and you don't even know that you have so much stress. I'm thinking like, भाई मुझे तो कोई life में stress ही नहीं है, I'm having the great time and all of that. But inside there is a lot of stress that's happening. And so I realized ki that is because my body doesn't feel relaxed all the time. So by adding this one supplement, and I am like against supplements. I take protein because, you know, sometimes you don't get enough protein in the day. So you need to take that. And then the next thing I do is I've started taking this magnesium and it has been life changing. I sleep so well. And I live in an apartment. तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे there is this one lady. और वहाँ पे वो लोग ना सुबह 5 बजे उठ जाते हैं. सो जो 5 बजे उठ के पूरे घर में वो चलते रहते हैं, ऐसा लग रहा है डायनासोर चल रहा है, जबकि वो नॉर्मल लोग ही है. धुम धाम धम धम करके ऐसे फ्लोर में आवाज़ आती है, उसमें मेरी नींद इतनी ख़राब होती है ना कि मुझे लगता है हाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे वापस किसी तरह सुला दे. बट मैग्नीजियम हैज़ बिन लाइफ चेंजिंग. आई डिड 2 things टू इम्प्रूव माई स्लीप ड्रास्टिकली, विच वॉज 1 ऑफकोर्स द मैग्नीजियम. और सोने के आधे घंटे पहले आप ले लो, आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी. मैं पूरे 7 घंटे नॉर्मली बिना उठे सो रही हूँ. मुझे इतनी मज़ा आ रहा है ना सुबह उठ के, जब मैं आई एम लाइक ओ वाओ दिस फील्स सो ग्रेट, दिस इज़ व्हाट गुड स्लीप फील्स लाइक. एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ टू इम्प्रूव माई स्लीप इज़ आई गॉट दीज लाइक स्लीपिंग ईयर प्लग्स. वो कान में मैं वो ईयर प्लग्स डाल के सो रही हूँ और उससे मुझे ना कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आती, ना बाहर का ट्रैफिक का शोर आता है. चाहे एम्बुलेंस आए, फायर ट्रक आए, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. मैं सो रही होती हूँ अपने आराम से, चाहे मेरे पड़ोसी ऊपर होके कथक क्यों ना करे पूरा, लेकिन आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ, हैविंग द बेस्ट स्लीप ऑफ माई लाइफ.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो।
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive Media Partner, Panacea।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं ही तो।
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
0: Hello, we are back guys. Thank you so much. Bhai, mujhe bada achha laga ki so many of my listeners are relating to the lack of sleep problem, क्योंकि कई लोगों को ना ये नींद की problem बहुत common है। मतलब ये सिर्फ मेरी को नहीं है, आई एम श्योर बहुत लोगों, आफ्टर अ सर्टन एज, जितना आपकी एज बढ़ती जाती है नींद की प्रॉब्लम बहुत आती रहती है। तो आई विल टेल यू वॉट आई एम डूइंग, यू कैन ट्राई इट, इट इज 100% सेफ, बट इफ यू डू वॉन्ट टू डबल चेक विद योर डॉक्टर, आई विल 100% रिकमेंड इट। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही जो करना है करिए, बिल्कुल एक रेडियो शो, रेडियो जॉकी की बातों पे मतलब पूरी तरह से भरोसा मत करिए, क्योंकि भाई आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम टेलिंग यू वॉट आई डिड, एंड देन यू कैन यू नो डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। Now, magnesium glycinate, that's the specific combination, because why? क्योंकि magnesium जब आप जाओगे off the counter लेने, कहीं भी हर जगह मिल जाएगा, Costco में मिल जाएगा, Kroger में मिल जाएगा, CVS में मिल जाएगा, and it's just like vitamins की तरह से, जैसे multivitamins वाली aisle नहीं है, वहाँ वहीं पर मिल जाएगी आपको, उसी aisle में मिल जाएगा, and it's off the counter, you don't need a prescription or anything like that. But आप जाओगे तो 3-4 varieties मिलती है magnesium की। What I like best is magnesium glycinate, because that is more easier on the stomach. So someone who has some stomach issues, gut issues or whatever, it is so much easier to digest and it absorbs better in your body. And it's absolutely magical. Sone ke aadhe ghante pehle, I have 300 mg magnesium glycinate ki pill aati hai and I have that. And it is life changing. And pata hai, maine kya research kiya before taking the magnesium, मैंने ये realize किया कि भाई magnesium से मतलब what is this magnesium? We all know that it's a mineral, right? We all know minerals, vitamins सबकी body में ज़रूरत होते हैं, iron ज़रूरत होती है, potassium ज़रूरत होती है, magnesium भी ज़रूरत होती है. तो magnesium हमें pill क्यों लेना पड़ रहा है? हम normal food से क्यों नहीं ले सकते? जैसे you know, I'm that kind of a person who believes that everything should be natural and all of that. तो in that case, मैंने research किया कि कौन से foods में magnesium होता है. And I realized, जिन foods में magnesium ज़्यादा होता है, जैसे कि spinach है, kale है, और भी बहुत सारी vegetables हैं. मैं अभी search करती हूँ, रुको. Foods rich in magnesium. तो मैं बताती हूँ कौन से. Any nuts, seeds, legumes, dark leafy greens, ठीक है? Pumpkin seeds are the highest sources of magnesium. Legumes जैसे राजमा नहीं भाई, ब्लैक बीन्स, एडमामे, चिकपीज, दीज आर हाई एंड लेग्यूम्स. नट्स जैसे कि आमंड्स, कैश्यूज और पीनट्स, दे आर वेरी रिच इन लेग्यूम्स, सॉरी मैग्नीशियम. किनुआ, ब्राउन राइस, ओटमील इज ऑल्सो प्रिटी रिच इन लेग्यूम्स. इसी तरह से और भी कुछ कुछ है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जितनी क्वान्टिटी में हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती है, उतनी क्वांटिटी में वो फूड में मिलती नहीं है. तो आप कितनी भी मतलब अगर आप हर मील में स्पिनच खा रहे हो ना, या हर मील में आप आमंड्स खा रहे हो, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है. वी कांट हैव इतने सारे आमंड्स, क्योंकि आमंड में कैलोरीज भी होती है. स्पिनच इज़ वेरी गुड दो, मतलब हार्डली नहीं, बट आप इतना स्पिनच तो नहीं खा रहे हो ना कि ब्रेकफास्ट में भी एक कटोरा स्पिनच, लंच में भी एक कटोरा स्पिनच, रात में डिनर में भी एक कटोरा स्पिनच, स्नैक में भी एक कटोरा स्पिनच. तो उतनी मैग्नीशियम मिली नहीं हमारी बॉडी को, है ना. अब हम थोड़ा सा स्पिनच लेते हैं, या पालक पनीर में ले लिया थोड़ी सी स्पिनच ले ली, या मैं तो स्मूदीज में डाल देती हूँ अपने. आई मेक दिस प्रोटीन शेक, उसमें मैं स्पिनच डाल देती हूँ. आई लव इट. ओके, सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ दैट मैग्नीशियम थ्रू योर डेली डाइट, देन दिस इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू एड, एंड इट हैज चेंज्ड माई स्लीपिंग गेम लाइक एनीथिंग. दूसरी चीज, मुझे एक और कॉलर आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने दो चीज़ें बोली, एक तो आपने मैग्नीशियम का बोला और एक तो आपने बोला ईयरप्लग्स का लगा के सोने के लिए. एंड व्हाट ही ब्रॉट टू माय अटेंशन वाज एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट. कुछ दिनों पहले एक डैलस के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई थी, एंड इट वाज क्वाइट अनसेफ. बट तो इसीलिए उन्होंने बोला भाई आप ईयरप्लग्स मत लगाओ, लेकिन कभी अगर आग वाग लग गई और फायर ट्रक वगैरह आ गया, तो मतलब वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू डाई. बेसिकली वी वॉन्ट ऑल आवर रेडियो शो होस्ट टू बी अलाइव, बिकॉज आपको चाहे स्लीप नहीं आए पर आप 100 साल तक जियो. उन्होंने एग्जैक्टली यही शब्द बोले. मैंने कहा अरे थैंक यू, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं बिना ईयरप्लग्स के सोऊं, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है. तो एनीवेज आप ये वाला एंजॉय करिए. दिस सॉन्ग गोज आउट टू I don't know, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, पर ये इनकी रिक्वेस्ट थी, तो आप ये गाना सुनिए.

गाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्यून है ना. हम लोग लास्ट के 15 मिनट में हैं. मैं कोशिश करूंगी बातें कम करूं, आपको गाने ज़्यादा सुनाऊं, लेकिन एक अनाउंसमेंट मुझे करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे लिस्ट में है वो टेक्सास प्राइमरी केयर. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lanoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan med spa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime and no appointment needed. That song that I had just played, Man Marziya, itna pyara gana hai. It's one of my favorite. और वो शिल्पा राव की आवाज़ में जैसे आपने सुनाई था, एंड इट वॉज कम्पोज बाय अमित त्रिवेदी. आई थिंक अमित त्रिवेदी इज दिस एराज वन ऑफ द बेस्ट कम्पोजर्स दैट एग्जिस्ट्स इन टुडेज टाइम्स. लाइक ही इज फैंटास्टिक, हिज म्यूजिक इज जस्ट सो हार्ट रेंचिंग. और ये जो मूवी से था ना लुटेरा, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट बॉलीवुड मूवीज. कितनी बार भी मैं देख लूँ ये, और एक दूसरी है क्वीन, मैं और एक और है मुगले आजम, ये तो ऑल थ्री ऑफ देम आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट मेरे को ना वो पीरियड ड्रामास बड़े अच्छे लगते हैं, यू नो दैट आर सेट इन अ डिफरेंट टाइम जोन या डिफरेंट एरा. सो फॉर एग्जाम्पल चाहे वो ब्रिजटन हो, चाहे वो मुगले आजम हो, या मनमर्जिया या लुटेरा हो विच इज सेट इन लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया, मुझे इतना अच्छा लगता है ना. आई मीन आई जस्ट फील लाइक आई हैव जस्ट ट्रैवल्ड बैक इन टाइम. बट दैट बींग सेड, एवरी टाइम आई वॉच लुटेरा ना, मेरे आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू निकलते हैं. मैं आई कैन फील द पेन ऑफ बिट्रेयल. और उसके बाद जब शी इज़ अबाउट टू डाई एंड सडनली रणवीर सिंह वॉक्स बैक इन टू हर लाइफ एंड ही इज दिस टाइम नाउ ही इज़ बिकम अ ग्रेट हस्बैंड एंड इज एक्चुअली केयरिंग फॉर हर. पहले रैन आउट ऑन लाइक ऑन हर मैरिज ऑन द डे आफ्टर द वेडिंग, भाग गया शादी करके ऐसे ही. और उसके बाद सडनली इज वॉक्ड इन टू हर लाइफ एंड देन हैंगिंग अ फेक लीव फ्रॉम अ सूखा हुआ पेड़, क्योंकि उसकी आत्मा उस पेड़ में चली गई थी. और उसने ये बोला था कि जब उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी अपनी जान वैसे ही दे दूंगी. और तो इसीलिए रणवीर सिंह ने एक नकली पत्ता बनाया, जिसे किसने सिखाया था बनाना, सोनाक्षी सिन्हा ने सिखाया था. वाओ, मतलब सो रोमांटिक यू गाइस. मुझे आज जाके फिर से देखनी पड़ेगी ये मूवी, आई हैव टू वॉच इट राइट नाउ. एनीवेज 10 मिनट के बाद मैं देखूंगी वो, क्योंकि उसके बाद मैं घर जाऊंगी तब देखूंगी. बट तभी के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए. थैंक यू एवरी वन फॉर ट्यूनिंग इन टू माई शो. कल आइए, टुमारो इज द almost the last day of the working week, which is a Thursday. Mera last day hai Phanesia pe is hafte ke liye, not last day forever, but is hafte ke liye mera last day hai. And tomorrow we are going to have lots and lots of fun. We're going to read some Reddit threads, which are kind of you know, risky business, and it's still very fun and entertaining. So just join in on the radio tomorrow and let's have a blast. For now, enjoy this beautiful tune in Junita Gandhi's voice, not the original. This is a remake, but it's very beautiful remake.

गाइस, कितना प्यारा गाना था. आई लाइक दिस वर्जन ऑफ जोनिता गांधी. शी हैज़ केप्ट द ओरिजिनल मेलोडी एग्जैक्टली द वे इट इज़. शी हैज़न द म्यूजिकैलिटी हैज़न चेंज्ड. उसने उन्होंने ओरिजिनल गाने से उसकी ब्यूटी नहीं छीनी. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग रीमेक्स लाइक दिस. अगर आपको रीमेक कुछ करना है ना, तो आप उसको एलिवेट करिए, उसको डिग्रेड मत करिए. मेरा यही मानना है. आई लव रीमेक्सेस, बट इट हैज़ टू बी ट्रू, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, एंड इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल. इट कॉन्ट बी जस्ट एनी यू नो रीमेक्स एंड स्टफ. आई लव रीमेक्स, बट दे हैव टू बी डन नाइसली, राइट. ये नेक्स्ट गाना जो मैं आपके लिए बजाऊंगी, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, बिकॉज ये सुनिधि चौहान के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं. अभी पता है क्या हो रहा है? देयर इज अ न्यू वेव ऑफ दिस इंडी म्यूजिक दैट्स हैपनिंग इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. इट्स रियली रियली रियली रियली रियली बिग. एंड ऑल्दो वी आर बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वेयर वी डू प्ले मोस्टली बॉलीवुड म्यूजिक, बट वी ऑल्सो प्ले बॉलीवुड सिंगर्स हु हैव टेकन रिस्क एंड डू डन न्यू सॉन्ग्स. एंड यू नो आई ट्राई एंड ब्रिंग स्टफ दैट इज स्टिल फेमिलियर टू एवरी वन, बट ऑल्सो इट लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज मतलब वेयर एल्स विल यू गेट इंट्रोड्यूस टू न्यू म्यूजिक. तो ये सुनिधि चौहान के आवाज में शी हैज कोलैबोरेटेड विद दीज टू पोएट्स, सुनैना खचरू एंड सलील कुलकर्णी एंड जोमिन वर्गीज. एंड शी हैज रिटन दिस सॉन्ग, नॉट शी हैजन रिटन दिस सॉन्ग, शी इज परफॉर्म्ड दिस सॉन्ग. द लिरिक्स आर बाय सुनैना खचरू, द कंपोजर इज सलील कुलकर्णी, एंड द म्यूजिक प्रोडक्शन इज बाय सौरभ भलेरो. बट इट्स इन सुनिधि चौहान्स वॉइस एंड इट इज़ लिटरली सो ब्यूटिफुल. इतना डीप और मीनिंगफुल है ये गाना. आप इसके लिरिक्स सुनिए, इसके लिरिक्स सुनिए. इसका पहला मतलब लाइन है, तुम कहते हो कविता लिख दो पर मुझे खून बहाना पड़ता है. इतना दर्द है उसमें, है ना. तो आप ये गाना सुनिए एंड हैव अ ग्रेट नाइट यू गाइज.

0: Spain of God.
1: Let's go now.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with Funasia Radio.
1: Praveen, what is this?
2: ये सब क्या है?
1: देखो तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर, वो अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना देन आई एम सॉरी।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Ek baar jo maine commitment kar di,
5: to phir sirf Fun Asia hi sununga.

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: Hi, this is Ranbir Kapoor.
4: And I'm Mani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जाने क्या हुआ मिलके।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: परेशानी,
1: बोल बचन का खतरा,
0: खतरा
1: बोल बचन की भाषा,
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं ये मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right and body pain from tow truck to headlight.

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

निशान फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान। ओ तैयब टेल मी हाउ, तैयब टेल मी हाउ, लड़की तेरी ताजमहल सी हम करें वाह।

0: झुमका।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: Bringing the community together. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
0: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑवरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी।
1: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी।
0: ओ वाओ।
2: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑवरी, everything they see, one place, one vibe. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: अच्छा बोतला खुल

FM turns up the heat in Dallas.

0: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो, लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 a.m. लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
7: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
8: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
9: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0400 to Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
14: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
15: Thank you so much for joining us, ladies and gentlemen. Welcome to the show on this lovely Thursday morning. It's the 4th of June today. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज़ वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम. वेलकम टू द शो.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली।
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz tazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maina chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Aaja meri gaadi mein baith ja.
7: Baith jao? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
8: Wo thoda overheating tha.
7: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
5: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में रॉयल सोना मसूरी राइस हो नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
11: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे CT स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
13: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Mayoral candidate Mark Hill will be coming up in this next hour of the program. You'll stay with me right here. It is now 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
7: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
6: Sach? Ya phir court decide karega?
7: Wait, what?
5: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799।

0: That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
0: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
6: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
7: क्या?
6: सैलरी बंद हो जाती है.
7: और बिल्स बंद नहीं होते.
6: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
7: मतलब?
6: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
0: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसे
9: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
5: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
9: सच में बिल्कुल घर जैसा.
5: Try the variety of veg and non-veg specialty kulchas with gravy, butter chicken and many more. Located in Irving, there is Punjabi Ghar Ka Khana on every plate. Chandigarh wale, taste that feels like home.
10: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
11: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. It is a beautiful Thursday out there. It is the 4th of June. We are heading towards 90 degrees. And we have some rain in the forecast later in the day. 20 to 30% coverage. So some of you won't see a drop. Some of you might see more. But definitely more rain on Saturday going into Sunday. Welcome to this final hour of our program. Number in the studios continues to be 972-235-5555. And don't forget, mayoral candidate here on our airwaves in just a few minutes, Mark Hill. I look forward to chatting with him. And I too want all of you to listen in, particularly all of you in Frisco.

0: or tax liability. She's honest, transparent, and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.escorialcpa.com. Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
1: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
2: Safai, khoobsurat hai manzil se bhi.
3: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
4: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
5: रुको जरा, सबर करो.
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. Stay tuned to Phoneshia.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

आपका भी दिल अगर धन्ना धन्ना करता है ना जब फनीशा रेडियो सुनते हैं, तो यकीनन वी आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज म्यूजिक इज व्हाट वी एब्सोल्युटली लव, और यही तो हमें साथ जोड़ता है. तो वर्ल्ड म्यूजिक डे क्यों ना मनाएं हम आपके साथ. 21st ऑफ जून को है वर्ल्ड म्यूजिक डे, और फनीशा 104.9 FM आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर आया है. एक्चुअली हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं. वी ऑल हैव दैट वन फेवरेट सॉन्ग कि हम वो कभी स्किप ही नहीं कर सकते, कितने भी लेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर वो गाना प्ले हो जाए रेडियो पे तो हम वो नहीं स्किप करके जा सकते, राइट? क्योंकि कुछ तो एक नॉस्टैल्जिया इफेक्ट कई बार होता है, कभी कुछ एक याद जो जुड़ी होती है उस गाने के साथ. देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर ए सॉन्ग टू बी ए फेवरेट, राइट? तो इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आप अपने पसंदीदा गानों की कहानी या गाने शेयर करें, लेट्स से दैट, ऑलराइट? तो आपको गूगल फॉर्म मिलने वाला है विच इज़ ऑन आवर वेबसाइट fanisha.net, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेज पर, यस, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर मिल जाएगा आपको. और ये कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए 15th जून तक ओपन है. यू हैव टू जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म एंड शेयर योर लव फॉर म्यूजिक. तो हमें बताना है आपको कि भाई फेवरेट गाना जो है जो आपके लिए बिल्कुल अनफॉरगेटेबल म्यूजिक मेमोरीज लेकर आता है, यानी कि आप हमें अपनी कहानियाँ, इमोशन, नॉस्टैल्जिया, सेलिब्रेशन, कनेक्शन, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनसे जुड़े जो आपके सवाल हैं गूगल फॉर्म पे, बस वो थोड़ा सा भरना है आपको, एंड देन यू कैन सेलिब्रेट विथ अस ऑन 104.9 FM, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग प्राइजेज होंगी विनर्स के लिए. ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स डाइव बैक इनटू आवर बॉलीवुड म्यूजिक राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

ऑन स्क्रीन दो हीरो और हीरोइन में जो टकरार थी वो चलता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी जब टकरार हो लेकिन ऑन स्क्रीन दिखाना पड़े कि बहुत प्यार हो, दैट इज़ व्हाट दिस नेक्स्ट ट्रैक इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट. और क्योंकि वो पर पापा वाला वो जो सीन था वहीं से कुछ यहाँ पर जो मैं पहुँचने वाली हूँ, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कुछ आर डी बर्मन का ही फ्लेवर वी गोना कैरी ऑन इन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. और टकरार की जो बात कर रही हो वहाँ पर मुझे याद आता है कि रियल लाइफ में जब हमारी टक्कर होती है ना, और ये यहाँ पे मैं व्हीकल की टक्कर की बात कर रही हूँ यानी कि एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, दैट इज़ ए सीरियस सीरियस प्रॉब्लम, राइट. और जब स्पेशली गलती अगले वाले की हो, अगली पार्टी की हो और कॉम्पनसेशन आपको मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों में बड़ा स्ट्रेस होता है. और ऐसे में अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम ज़रूर आप याद रखें, एंड ही इज़ गोइंग टू फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू एब्सोल्युटली डिजर्व, बट यू डू नॉट फील लाइक टेकिंग ऑल द स्ट्रेस ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस. तो ये प्रोसेस उन पर छोड़ दें, और ये वो वादा करते हैं कि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप नहीं जीतते, लेकिन वो ये भी एश्योरेंस दिलाते हैं कि वो काफ़ी अच्छा, यू नो, उनका रिव्यूज़ जो है उससे आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है ऑफ गेटिंग देयर क्लाइंट्स द कॉम्पनसेशन दे डिज़र्व. तो ज़रूर एक फ्री कंसल्टेशन उनके साथ करें, 4693005046, एंड सी हाउ दे कैन हेल्प यू. attorneyomar.com इज़ द वेबसाइट दैट यू मस्ट रिमेंबर, एंड द नंबर टू कॉल इज़ 4693005046. Thanks.

एंड दैट इज शाहरुख खान इन द सॉन्ग. मैंने सोचा कि दीन खान की कुछ अपडेट दी जाए आप लोगों को. तो शाहरुख खान तो आप जानते ही हैं कि अपने एक्शन थ्रिलर किंग को लेके काफी बिजी हैं, जो कि दिसंबर 26 को इसी साल रिलीज होने वाली है. एंड दैट इज हिज फिल्म विथ हिज डॉटर सुहाना खान, जो मच एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी. और ये फिल्म जो है कुछ अनऑथराइज बिहाइंड द सीन लीक्स हुए थे इस फिल्म के लिए, और इसलिए कुछ परेशानी हुई थी और कुछ टेम्प्रेरी डीलेस भी इस फिल्म ने देखा बिकॉज ऑफ दिस शोल्डर इंजरी दैट शाहरुख खान हैड. उसके अलावा सब मस्त चल रहा है. एक हाई ऑक्टेन स्टंट करते वक्त वैसे ही लास्ट ईयर ये इंजरी उनको हुई थी, तो ही इज ऑल चंगा नाउ एंड ही इज बैक यू नो शूटिंग फॉर दिस फिल्म. सारा कुछ बिल्कुल सही ऑन ट्रैक चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि 24th ऑफ दिसंबर ये फिल्म जो रिलीज होने वाली है, दिस क्रिसमस फिल्म रिलीज दैट इट इज गोइंग to be for Shahrukh Khan at the theaters. You can totally look forward for that. And of course, Matrubhumi, which is in queue, which is a Salman Khan film. Aur is film ki bhi kafi delay wagaira kuch hua hai. And can I just honestly say, without trying to offend the Salman Khan fans here, ki mujhe trailer bilkul bhi nahi pasand aaya. It's the typical, you know, film jahan pe Salman Khan is all hero and all of that, you know. Us tarah ka fir se wahi रेपिटेटिव बॉलीवुड ट्रोप जो है उसी तरह का मुझे कुछ लग रहा है. तो मुझे ट्रेलर देख के मजा नहीं आया. वेल, ऑल द बेस्ट टू सलमान खान. ही कैन टोटली बैंक ऑन हिज फैंस, क्योंकि बड़ी तादाद में है. अगर वो बड़ी तादाद जो है वो पहुंच गई फिल्म्स पे थिएटर में, तो मातृभूमि ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी ए हिट. दैट आई कैन टेल यू इवन बिफोर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म कब रिलीज हुई होगी इसका भी डेट अभी मेरे ख्याल से फाइनलाइज नहीं हुआ है. इट वॉज टू रिलीज इन अप्रैल और मई, वॉज इट? आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट इट. मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन येस, वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. फिलहाल सलमान खान का एक गाना हो जाए और उसके बाद आते हैं आमिर खान पे.

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. हमने दो खान्स की खबर दे दी आपको, आप तीसरे खान की खबर देने जा रहे हैं. दैट इज आमिर खान. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्टिंग विद अ फैक्ट कि नाचने की तो बनती है, क्योंकि गेस व्हाट, आमिर खान इज मैरिंग गौरी स्प्राट. स्प्राट मुझे प्रोनंसिएशन नहीं आता है, जो भी मुझे सही करना चाहते हैं वो प्लीज कॉल करें. लेकिन येस, ही इज गेटिंग मैरिड ऑन जुलाई 5th. एग्जैक्टली एक महीने के बाद इनकी शादी होने वाली है. एंड आमिर खान हैज सेड दैट इन एन इंटरव्यू एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ. वेल, इट कम्स एट जस्ट द राइट टाइम, क्योंकि लगान के 25 साल होने वाले हैं और जून 12 से जून 14 के बीच यहाँ इंडिया में ये री रिलीज होने वाली है फिल्म, जो कि सुपर डुपर हिट रही, आशुतोष गवारीकर की फिल्म. एंड आशुतोष गवारीकर द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हैज पोस्टेड अ चैलेंज ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे जाकर आप ये लगान पोस्टर चैलेंज देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि लगान का जब पोस्टर बना था, दे मेड श्योर कि क्रिकेट का कुछ मेंशन या कुछ भी पिक्चर या कुछ इंडिकेशन लोगों को नहीं मिले. पीपल न्यू कि कुछ ग्रुप में आकर एक साथ एक जंग लड़ी जाएगी, वो जंग किस बारे में होगी, क्या है, वो सब कोई इंक्लिंग नहीं था ऑडियंस को. एंड देयरफॉर यूज योर इमेजिनेशन टू मेक ए री इमेजिन सॉर्ट ऑफ द आइकॉनिक पोस्टर ऑफ लगान. और ये आप लोगों के लिए लगान पोस्टर चैलेंज, जस्ट यू नो सेंड इट टू हिम ऑन सोशल मीडिया. एंड गेस वॉट, आप लोगों को जीतने से क्या मिलेगा ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर. आई थिंक यू विल बी इन्वाइटेड टू वॉच द फिल्म विथ द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म, समथिंग लाइक दैट. आई थिंक आई हैड हर्ड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ, स्पेशल स्क्रीनिंग होगी इस फिल्म की और उसमें आपको इनविटेशन मिलेगा. हाउ अमेजिंग इज दैट. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आमिर खान.

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. लगान के पोस्टर चैलेंज में जरूर हिस्सा लीजिएगा. आशुतोष गवारिकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. बट यस, यू हैव टू री इमेजिन द पोस्टर ऑफ लगान और भेज दीजिए आप आशुतोष गवारिकर को. क्या पता आप विनर हो, और आप विनर हो तो 50% शेयर मुझे भी मिलेगा. क्या मतलब 50% सीट आपकी, वो जो स्क्रीनिंग होगी ना लगान की बैक इन इंडिया, वहां पे आधा सीट मेरा भी होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझसे मिली. अगर आपको पहले से ही पता था तो पूरी सीट चलिए आपकी, नो कॉन्टेस्ट देयर. यू आर लिस्निंग टू फनी शर रेडियो 104.9 एफएम. अगर फीफा के बारे में आप जानना चाहते थे इस सेगमेंट में, बिकॉज दैट इज व्हाट आई डू ड्यूरिंग दिस टाइम 10:45 टू 11, तो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए पूरा आधे घंटे का, क्लोज टू 30 मिनट्स का मैं लेकर आने वाली हूँ इन जस्ट ए बिट. बेसिकली सेइंग स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hey Maps, take me to my desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
3: Your new destination has arrived.
5: मामू, देखो क्या हो गया.
6: ओ, क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
6: ओए, जर्मन का कमाल है.
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
6: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
7: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
8: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
9: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, उड़ा डेट

हैप्पी बिगिनिंग्स की बात करते हैं. फीफा सेगमेंट दैट दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. वैसे तो मैं 10:45 से 11 o'clock के बीच करती हूँ, लेकिन देयर वाज सो मच टू शेयर, देयर इज सो मच एक्साइटमेंट इन द एयर. मैंने सोचा यार दिस लॉन्गेस्ट सेगमेंट दैट आई शुड डेडिकेट टू फीफा 2026. हम में से कितने लोग फैन हैं, और डैलस इज वन ऑफ द होस्ट सिटीज एंड वी आर सो एक्सटैटिक अबाउट दैट. सो इस सेगमेंट में आपके लिए गिव अवे भी है, और ये गिव अवे आप लोगों के लिए है फ्रॉम Red Hot Chili Pepper, ladies and gentlemen. So get ready for that as well. 972-235-5555. थोड़ा माहौल जमा रहे हैं अपबीट म्यूजिक के साथ, क्योंकि फीफा शुरू होने वाला है जून 11th को, और यहाँ डैलस में फ्रॉम जून 14th ऑल द वे टिल 19 जुलाई दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय फीफा 2026.

0: दिस इज द फीफा सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रेड हॉट चिली पेपर का गिव अवे है. मैं सवाल कौन सा पूछूं इसी में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि इतने सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे और इसमें से एक सवाल मैंने सोचा फीफा रिलेटेड पूछने की बनती है. क्या आप जानते हैं व्हेन वाज फीफा फाउंडेड? इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, व्हेन वाज इट फाउंडेड? अगर आपको लगा कि फीफा में ये ट्रांसलेट नहीं हुआ तो मैं ये आपको बता देती हूँ. इट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, दैट्स व्हाट इट इज. यस, तो बताइए व्हेन वाज इट फाउंडेड. मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट एंजॉयिंग वंस अगेन फीफा. और फीफा हम हर बार इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पता नहीं होते हमें. हमने सोचा कि थोड़ा बेस दिया जाए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि डैलस इज वन ऑफ द होस्ट सिटी एंड वी वांट टू बी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड इट. और साथ में आपके लिए है एकदम फ्री में द एंथम, द मेन सॉन्ग ऑफ फीफा दैट इज कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. मेरे साथ फिलहाल कोई है, लेट्स फाइंड आउट इफ दे हैव द answer for all of us here. To bataiye, when was FIFA founded? Okay. ये लाइन ड्रॉप हो गई. मुझे लगता है कि प्रेपरेशन इस बात की नहीं थी, प्रेपरेशन कुछ गाने की थी, शायद रिक्वेस्ट वगैरह कुछ करना था. बट 972-235-5555 दैट्स नंबर इन द स्टूडियो, प्लीज गिव मी अ कॉल. रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से इधर ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलस का बेस्ट बटर चिकन जो आपके नाम मैं कर सकती हूँ, चिकन मक्खन वाला आपके नाम कर सकती हूँ. इट इज योर चॉइस कंप्लीटली. कॉल मी इफ यू हैवंट वन फ्रॉम देम इन द लास्ट मंथ. ऑल राइट, लेट्स टेक दिस कॉलर on the airwaves. Or bataiye, when was FIFA founded?
1: May 21st, 1904.
0: You are bang on. And मैं ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि आप एक महीने में नहीं जीती हैं रेड हॉट चिली पेपर से.
1: मैं कभी नहीं जीती हूँ.
0: ओहो हो हो, फिर तो आई एम वेरी हैप्पी टू गिव दिस वन फॉर यू. दिस इज डेफिनेटली केप्ट फॉर यू असाइड नाउ एंड दिस इज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. क्या नाम है आपका?
1: रूपा.
0: रूपा, थैंक यू फॉर योर कॉल एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो ये गाना भी मुफ्त में मिलने वाला है और रेड हॉट चिली पेपर चिकन, सॉरी रेड हॉट चिली पेपर का जो ड्राई चिली चिकन है या चिली बेबी कॉर्न है या चिकन मक्खन वाला आपके नाम की, आप क्या खाना पसंद करेंगी वैसे? आउट ऑफ क्यूरोसिटी,
1: आई थिंक बेबी कॉर्न.
0: ये सभी आप भी वेजिटेरियन हो क्या?
1: I know, yes.
0: You are somehow this entire week only vegetarians have been winning this one. Aur jab bhi maine ye pucha hai sabne yahi jawab diya hai mujhe. So enjoy your chili.
1: Oh, really?
0: Yeah. Thank you. Thank you for sharing though. It was none of my business. Lekin na main apna business bana leti hu khane peene ke mamle mein. Main ye apna business bana leti hu. Well, thank you for
1: okay.
0: I appreciate you and chaliye wo gana ho jaye, which is the main song, the anthem of FIFA, Die Die. I'll tell you what it exactly means in just a bit. Gana enjoy kijiye. Main Rupa se baat karke aati hu.
2: We're ready. We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

पॉप आइकॉन शकीरा और साथ में एफ्रोबीट सुपरस्टार बर्ना बॉय का ये आपने गाना सुना जो कि है एंथम 2026 फीफा वर्ल्ड कप का, और ये कुछ दो हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। टाइटल डाई डाई, जिसका मतलब है कम ऑन या गिव इट योर ऑल, दैट इटालियन स्लैंग दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस सॉन्ग। और इस बार फीफा पूरा एल्बम अपना एक रिलीज करने वाला है, एक डायनामिक ग्लोबल कल्चर्स का जो एक एमलगमेशन हमें मिलेगा, एक जबरदस्त म्यूजिकल ब्लेंड हमें देखने को मिलेगा। True to the massive 48 team, three host nation scale of this tournament, ये पूरा album कल release होने वाला है। And the main song that you heard, it is in also five other languages, actually four other languages, Spanish, Italian, French and Japanese, along with English of course. And the lyrics explicitly shout out the competing nations and legendary icons like Cristiano Ronaldo and also Pele. And along with that, आप जो वीडियो में देखेंगे वो मेसी को और साथ में एम्बापे को भी देखने वाले हैं। And it is amazing the album that is coming out. FIFA has taken a new approach this year by releasing a stacked multi-genre official soundtrack album. Once again, कल रिलीज होने वाला है। और ये जो है ये sort of represent करता है the distinct global cultures colliding in North America for FIFA. एक और गाने से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो एक रीसेंट एडिशन हुआ है, एंड दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू बट आफ्टर दिस सॉन्ग। एंड रूपा, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस गिव अवे फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 21st ऑफ मई 1904 वाज व्हेन फीफा वाज फाउंडेड।

0: The full 18-track album officially hits all major streaming platforms globally tomorrow. Aur saath mein Speed ko unhone internet creator jo hai wo right alongside the biggest music royalties on earth, and it is The Champions that was released on May 31st as an independent music, aur FIFA ne usse apne album mein include kar liya hai. That is crazy, isn't it? And you can get that story on I Show Speed FIFA album breakdown. If you search by that name, aapko YouTube pe na wo jab wo acceptance DM mila from FIFA, wo sara kuch cover kiya hua hai. Chote se video mein zaroor dekhiyega. Very fun story, backstory that I really wanted to share with all of you.
1: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
6: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
7: अरे यार, डालस में पंजाब?
8: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
9: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
10: Documents ya parcel bhejni hai?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
16: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
17: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
16: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
13: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
18: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
19: Tracks that put you on the right track.

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त है कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं। लेकिन सवाल पूछने से पहले बता देती हूं कि किसको मैं देने वाली हूं ये इनाम। एंड दैट इनाम इज गोइंग टू बी फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ, और आपको मिलने वाला है एक बढ़िया सा तगड़ा सा ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम देम। एंड यू नीड टू रिमेंबर, इट इज द फोर्ट वर्थ लोकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। और वहां से वन ऑफ यू इज गोइंग टू विन दिस गिफ्ट हैम्पर। तो मुझे बताइए आपकी, क्योंकि हम SP बाला सुब्रमण्यम को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ प्योर मैजिक ऑफ हिज म्यूजिक, हिज वॉइस दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय। तो आप मुझे बताइए कि बॉलीवुड के वो कौन से एक्टर हैं जिन पे उन्होंने मैक्सिमम यू नो प्लेबैक किए, जिनके लिए उन्होंने मैक्सिमम प्लेबैक किया है। दैट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन अबाउट SPB दैट आई एम गोइंग टू आस्क ऑल SPB फैंस हियर। You are listening to Funisha Radio 104.9 FM और इनाम में है one of you will get this India Bazaar Fort Worth। I am waiting for your call, जल्दी से बताइए ताकि गाड़ी हमारी आगे जाए। 972-235-5555। So who is that actor that he has sung the most for in Bollywood? जी हाँ, if you know the answer, you need to give me a call right now। नहीं तो फिर मुझे अगले गाने पर जाना पड़ेगा and then पूरे एक गाने का फासला हो जाएगा बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई डोंट वांट। तो चलिए इन कॉलर को लेते हैं। आप एक साथ बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो मैं सबसे पहले ये पूछ लेती हूँ कि आपको इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर पहले मिला है क्या? यू लाइक ऑल राइट, यू डेफिनेटली आर माई कैंडिडेट इफ यू गिव मी द राइट आंसर। टेल मी,
1: सलमान खान।
0: Absolutely. और कोई फेवरेट सलमान खान का गाना विच हैड SPB's प्लेबैक?
1: फ्रॉम मैंने प्यार किया
0: कोई भी गाना, ठीक है, लेट्स डू दिल दीवाना। हाउ अबाउट दैट? हाँ,
1: या श्योर।
0: ऑल राइट, थैंक यू। एंड व्हाट्स योर नेम सर?
1: श्रेयस।
0: श्रेयस, ऑल राइट श्रेयस, थैंक यू सो मच श्रेयस। आई वॉन्ट यू टू होल्ड द लाइन, क्योंकि आपने अभी अभी जीता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक तगड़ा ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। सो लेट्स गेट यू दिस सॉन्ग एब्सोल्यूटली फ्री। एंड ऑल्सो समबडी इज इन द कार, हु इज दैट?
1: ही इज माय सन।
0: हाउ ओल्ड इज ही?
1: Six years old,
0: so he's enjoying his summer vacation with his dad. और ये बहुत ही कमाल की बात है कि grocery hamper का सुन के वो भी excited हुआ, मुझे ऐसा लगा। Alright, please hold the line and have fun with your son and your family. And I'm going to take your details off air. और ये रहा वो गाना from मैंने प्यार किया।

और ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हमारे सारे स्टेशन एक्चुअली एसपीबी के गाने, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के गाने सारे लगा रहे हैं. एंड दैट वॉज टोल्ड टू मी बाय श्रेयस, जिन्होंने अभी अभी इंडिया बाजार से जीता दैट गिफ्ट हैम्पर. दैट फोर्ट वर्थ लोकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मस्ट चेक आउट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसलेट, इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड फॉर यू एंड रेस्ट ऑफ अस. डेफिनेटली गिव इट अ शॉट व्हेन एवर यू अराउंड. और बाकी हमारे जो ये लिसनर है श्रेयस, वो तो जाएंगे ही. और उन्होंने ही हमें बताया कि बाकी के हमारे स्टेशन जो है वहां पर भी एसपीबी के ही गाने लग रहे हैं. और कितनी कितनी अमेजिंग बात है कि ये वो प्लेबैक सिंगर है जिसे पैन इंडिया, यानी कि वो तेलुगु इंडस्ट्री हो या फिर तमिल इंडस्ट्री, फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज दैट ही हैज बीन पार्ट ऑफ, सब ने उनको बहुत प्यार दिया और सब ऑडियंस ने अभी उनको उतना ही प्यार दिया. बिग फैन ऑफ एसपीबी एंड सो इज दिस कपल. हमारे एक कपल हैं जो कि जब भी कॉल करते हैं तो साथ ही रहते हैं हमेशा. एंड दैट सोहेल एंड मरियम. आई एम गोइंग टू प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑन देयर रिक्वेस्ट. एब्सोल्युटली ए बी फिटिंग सॉन्ग फॉर द टू ऑफ यू.

I'm back to Lata Ji and SPB's duos, duets. और ये इसीलिए क्योंकि उसी के साथ शुरुआत की थी SPB ने बॉलीवुड में, एंड दैट वॉज एक दूजे के लिए. और कई सारे उन्होंने लता जी के साथ गाने गाए, जिनमें से एक और गाना विच फीचर्ड सलमान खान, जिनके लिए उन्होंने मैक्सिमम गाने गाए हैं इन बॉलीवुड. लेट्स गेट यू दिस नेक्स्ट वेरी पॉपुलर ट्रैक.

0: जमाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
1: Devanand and Nutan in that song, and it is for a reason that I played this song for all of you. Ek to ye dono hame bahut pasand hai, aur aaj Nutan ki birth anniversary hai, 90th birth anniversary, and we couldn't have possibly not celebrated her birthday, right? Aur ye un gaano ke zariye jo humne बहुत बहुत ज़माने से अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स के पेरेंट्स से सुनते चले आए हैं और बहुत इन्जॉय किया है. माई मॉम्स फेवरेट एक्ट्रेस दैट नूतन वॉज, बहुत सारे गाने अक्सर सुना करते थे हम, और इसीलिए उन गानों में से कुछ गाने मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए. विल नॉट जस्टिफाई ए जस्ट वन सेगमेंट, ए शॉर्ट ब्रीफ सेगमेंट डूइंग ऑन नूतन जी, लेकिन फिर भी नूतन जी के लिए जो हमारा प्यार था ना, आई थिंक इट डेफिनेटली कॉल्स फॉर फ्यू सॉन्ग्स राइट हियर ऑन Funnish Radio 104.9 FM, bringing the community together. और लता जी की आवाज़ में ये अगला गाना मैं आपको आपके लिए लगाने वाली हूँ, जिन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा अगर कोई उनकी आवाज़ को इमिटेट करता है पर्दे पर, दैट इज़ नूतन जी.

One of the finest ladies in the film industry, in Hindi film industry. It was Nootan ji, jinko hum yaad kar rahe hain, kuch gaano ke zariye. Aur ye ek gaana jo request ke taur pe aaya hai. I was about to play that. I think we all are on the same page. And the platform is, of course, Fun Asia Radio 104.9 FM. Lekin us gaane pe jaane se pehle na, main aapse kuch share karna chahti hu. And this is to do with Texas Primary केयर क्लिनिक, क्योंकि ये आपकी 13 साल से आपको सर्व करते आए हैं और हम काफ़ी खुश हैं इनकी सर्विसेज से. तो ये हमें लगा कि हम आपको भी बताएं कि ब्रांड न्यू नेम के साथ और सेकंड फ्रिस्को लोकेशन के साथ ये फिर हाजिर हैं. इंट्रोड्यूसिंग लुनॉक्सी मेडिकल एंड इट्स फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लुनॉक्सी मेडिकल विच ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services all under one roof. It is Lunoxy Medical, ladies and gentlemen. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. Appointment ki zarurat nahi hai. Now, that being said, let's get you Sulakshna's request right here.

This part of my show is brought to you by AG Fintechs, headed by Mr. Anil Grandi. और आप उनके टीम के साथ और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. If you need any guidance on financial services या tax services अगर कुछ चाहिए तो उनके पास dynamic solutions हैं आपके लिए. ज़रूर उनके साथ कनेक्ट करें. They use their decades of strategic tax planning, bookkeeping experience to enable small businesses succeed and build wealth by helping them save hundreds of thousands of dollars, ladies and gentlemen. So, agfintechs.com, ye website hai, aur zarur jaye, and you can get the phone number as well, which I am going to share it for all of you right here. If you are ready to write it down, 469-942-9888. Zarur jaye, they are trusted, efficient, and they can get you ready for the future. That's AG Fintechs, ladies and gentlemen. चलिए फ्यूचर में नहीं, आज ही आने वाली है एक फिल्म जिसका नाम है माँ बहन, जिसमें है माधुरी दीक्षित, धारणा दुर्ग. मैं धरना मैं समझती थी हमेशा, बट इट्स धारणा दुर्गा, जो कि एक अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर है, बहुत ही फनी है, और साथ में तृप्ति दिमरी. देखिए माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी को तो सभी जानते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ यू ऑल आर अवेयर ऑफ धारणा दुर्गा. शी विल बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर ऑल ऑफ अस फॉर श्योर. एंड साथ में है रवि किशन. और ये फिल्म है माँ बहन, जो आज नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है. सो दैट्स अ ग्रेट मूवी फॉर ऑल ऑफ यू टू चेक आउट दिस वीकेंड. उसी फिल्म का ये गाना आप लोगों के लिए लगाना चाहते हो, राइट हियर राइट नाउ, चेंजिंग गियर्स कंप्लीटली. बाय.

0: बातों बातों में मैंने रियलाइज किया कि मैंने तो वेदर अपडेट ही नहीं दिया यार. सो मच इज हैपनिंग, लेट मी टेल यू. थर्सडे जो हमारा मगी टेम्परेचर जो है उसी के साथ मगी एक उसमें स्टार्ट हुआ, एक फील के साथ स्टार्ट हुआ इन द 60s एंड 70s. एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट पार्टली टू मोस्टली क्लाउडी स्काइज विद ए चांस ऑफ आइसोलेटेड आफ्टरनून स्टॉर्म्स दैट इज इन द फोरकास्ट. और टेम्परेचर्स हमारे जैसे होने चाहिए जून के इस वक्त वैसे ही हैं, इन द मिड टू अपर 80s, फीलिंग मोर लाइक द 90s बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी फैक्टर एंड द हीट इंडेक्स कम्स इन टू एक्शन राइट देयर राइट. और फ्राइडे की तरफ मैं अगर नजर बढ़ाती हूं अपना, तो आइसोलेटेड स्टॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड विद हायर रेन चांसेस दिस वीकेंड फॉर ऑल ऑफ अस. दैट इज इन स्टोर राइट हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया. रेन चांसेस इंक्रीज टू 70% ऑन सैटरडे एंड 50% ऑन संडे एज एन अपर लेवल लो कंटिन्यूज टू प्रोवाइड DFW विद प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर. सो यूल वॉन्ट टू प्लान, यू नो, कि अगर आउटडोर कुछ हैं आपके वो थोड़े से आप देख लो, समझ लो, और कुछ भी करने के पहले डिसाइड कर लो बेस्ड ऑन द वेदर. द सीवियर वेदर थ्रेट दिस वीक इन इज लो बट सम स्टॉर्म्स मे प्रोड्यूस सम स्मॉल हेल एंड गस्टी विंड्स. बी अवेयर ऑफ द वेदर. नाउ दैट बीइंग सेड, आई थिंक आई एम रेडी टू वाइंड अप माय शो. सिमी इज अप नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: Beautiful home, Ravi. Million dollars. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye million dollar property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
5: Heere moti main na chahu.
6: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting, rerouting.
7: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
13: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
14: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
15: इस शहर को हुआ क्या कहीं पे अंधविश्वास का काला साया कहीं पे काला जादू धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का
16: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
7: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693474401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध

अ वेरी गुड आफ्टरनून माय देसी पीपल, मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और आज है थर्सडे, और हर थर्सडे की तरह आज भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं द थ्रोबैक थर्सडे। और आज हम है ना टाइम मशीन में बैठ के चलेंगे सीधा अपने स्कूल के दिनों में, वो स्कूल की घंटी, वो लंच ब्रेक का इंतजार, वो पीटी पीरियड की खुशी और मैथ टेस्ट का डर। स्कूल खत्म हो गया लेकिन यादें आज भी फ्रेश है। आज का सवाल ये है कि आपकी फेवरेट स्कूल मेमोरी क्या है? क्या वो एनुअल डे परफॉर्मेंस थी, या लास्ट बेंच वाली मस्ती, या फिर तब जब पूरी क्लास को पनिशमेंट मिली थी? आज के शो में हम सब शेयर करेंगे स्कूल मेमोरीज, फन फैक्ट्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स और कुछ मजेदार गिव अवे क्वेश्चंस भी, तो स्टे ट्यून्ड। और अपनी फेवरेट स्कूल मेमोरी मुझे कॉल करके बताएं 9722355555 पे।

आज हम थ्रोबैक थर्सडे में याद कर रहे हैं अपने स्कूल के पुराने मेमोरीज को। स्कूल का पहला दिन आपको याद है क्या कि कैसा था? कुछ बच्चे कैसे रो रहे थे, कुछ पेरेंट्स कैसे इमोशनल थे और सोच रहे थे हाय मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जाने लगा। कुछ बच्चे तो पहले ही दिन के क्लासरूम के किंग बन गए थे, ब्रो दिस इज माई एरिया, दिस इज माई किंगडम। स्कूल ने सिर्फ हमें पढ़ाया ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी हमारी पर्सनालिटी ग्रूम करी है भाई साहब। मतलब स्कूल तो हमें सब कुछ सिखाया भाई, स्कूल ने दोस्ती करना, हारना जीतना, टीम वर्क भी सिखाया है और हम सबके फेवरेट सब्जेक्ट भी हुआ करते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स पसंद थी आपको? अरे अब बताओ मुझे, कॉल करके 9722355555 पे आप ये भी बता सकते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट के अलावा वो कौन सा सब्जेक्ट था जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगा करता था, जिसको सुन के ही आपके माथे पे ऐसे पसीने आने लगते थे।

आज का थ्रोबैक थर्सडे का टॉपिक है फेवरेट स्कूल मेमोरी. और स्कूल का ना सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं होता था उस टाइम, होता था लंच बॉक्स का जमाना. मतलब जिसका लंच जितना ज्यादा टेस्टी वो उतना ज्यादा पॉपुलर, और वो एक

0: आधा टिफिन खा जाता था। आपको स्कूल में लंच में क्या मिलता था या फिर आप अपने पेरेंट्स से क्या फरमाइशें करते थे भाई, मुझे बताइए कॉल करके। और स्कूल के टीचर्स की भी बात कर लेते हैं। याद है दो टाइप के स्कूल के टीचर्स होते थे, एक जो काफी स्ट्रिक्ट, मतलब उनके आने से पहले ही धरती और क्लास पूरी कांप जाती थी, और जो दूसरा टाइप होते थे वो इतना मतलब बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी के, एवरीवन्स फेवरेट, सॉफ्ट एंड स्वीट। बट ऐसा होता है कि स्कूल जब खत्म हो जाता है ना तो जो स्ट्रिक्ट वाले टीचर्स हैं वो पता नहीं क्यों ज्यादा याद आते हैं। आपका क्या कहना है बताइए, मुझे कॉल कीजिए।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो,
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
16: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

0: just wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: जी हाँ लिसनर्स, आई लव यू टू. मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा. आज है थर्सडे. थर्सडे को हम मनाते हैं द थ्रोबैक थर्सडे और इस थ्रोबैक थर्सडे का टॉपिक है फेवरेट स्कूल मेमोरी. जी आज बहुत सारे कॉलर्स से हमने बात की और उनकी मेमोरीज के बारे में जानी और सब अपनी अपनी दोस्ती की बातें कर रहे हैं. स्कूल की दोस्ती खास होती ही है ना, स्टेटस मैटर करता है ना, सैलरी ना फॉलोअर्स. एक पेंसिल शेयर करने भर पे दोस्त बन जाते थे भाई हम. और एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे स्कूल में किसी मिनी फेस्टिवल से कम नहीं होता था. पूरे साल पढ़ाई करो या ना करो, एनुअल डे पर स्टेज पे आने का एक्साइटमेंट कोई भी मैच नहीं कर सकता. गए स्कूल खत्म हो सकता है लेकिन स्कूल की यादें कभी ग्रेजुएट नहीं होती. इसी नॉस्टैल्जिक नोट के साथ ये थ्रोबैक थर्सडे का सेगमेंट हम यहीं खत्म करते हैं. लेकिन अभी बहुत सारे गिवअवेज और बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड.

क्या वाइब है ना इस सॉन्ग की, आहू आहू आहू। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इसका भी रिमिक्स वर्जन आ जाता है तो। मतलब आजकल ऊंचा लंबा कद और चिनेरी चिनेरी का जो रिमिक्स वर्जन आया है उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग जो अपने आप में रिमिक्स जैसे साउंड करते थे उनका भी रिमिक्स बन रहा है, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। और अब शुरू हो गया है हमारा गिव अवे राउंड, लेकिन गिव अवे जीतने पे मिलेगा क्या वो तो बता दूं मैं आपको। वो है सैल्स नैशविल हॉट चिकन की तरफ से आपको मिलेगा 3 फ्री जंबो टेंडर्स एट रिचर्डसन लोकेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैल्स नैशविल हॉट चिकन लेके आए हैं एक अमेजिंग अल्टीमेट चैलेंज विच इज कॉल्ड इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। मतलब आप नाम सुन के ही सोचो, इन्फर्नो मतलब फायर, बहुत बड़ा फायर, और स्पाइस मतलब खुद में ऐसा एकदम मसालेदार। तो चैलेंज भी कुछ वैसा ही है। चैलेंज ये है कि 10 मिनट में आपको 3 एक्स्ट्रा हॉट जंबो टेंडर्स फिनिश करने हैं विद ओनली 1 कप ऑफ मिल्क। और टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कोई भी डिपिंग अलाउड नहीं है। और जो प्राइस है ना वो तो वो भी अल्टीमेट है। आई मीन अगर आप एक जंबो टेंडर्स खा सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज। और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए तो आपको यही फ्री सैंडविच मिलेगा 15 दिनों के लिए। और अगर आप वो खतरनाक महारथी हुए जिसने तीनों के तीनों इन्फर्नो टेंडर्स खत्म कर दिए विद इन 10 मिनट्स तो आप जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज which is free sandwich every day for 30 days. Isn't it amazing? ये challenge हो रहा है on Saturday, June 6th, 4 PM. तो जरूर participate करें, registration free है। You can register via FunAsia या फिर उनके official website पे भी जाके। और अब वक्त हो गया है इसी giveaway का question तो पूछ लो मैं आपसे। सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी में हमेशा गलत लिखा जाता है। वो कौन सा ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी में हमेशा गलत लिखा जाता है। अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए एट 972-235-5555 पे।

हमने अभी अभी अपना गिव अवे राउंड क्लोज किया है, बहुत सारे कॉल्स के लिए बहुत सारा शुक्रिया। हमने आपसे पूछा था एक सवाल, विच इज कि वो कौन सा ऐसा शब्द है, वर्ड है, जो डिक्शनरी में हमेशा गलत लिखा जाता है, और उसका जवाब है रॉन्ग, इनकरेक्टली। तो जिन्होंने भी आंसर रॉन्ग दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और आज के हमारे लकी विनर हैं सुल्तान नूरानी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सुल्तान जी, आपको मिलता है सैल्स नेशनल हॉट चिकन की तरफ से फ्री 3 जंबो टेंडर्स। एंड जो सैल्स नेचुरल हॉट चिकन है, ये काफ़ी फेमस है इनके इस मसालेदार चिकन टेंडर्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू रजिस्टर फॉर द इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज जो मैंने आपको बताया, तो यू कैन गो ऑन फनेशिया और ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड डू रजिस्टर योर सेल्फ। मीनवाइल आई एम प्लेइंग एन अमेजिंग सॉन्ग फॉर माई रिक्वेस्ट बाई अ लिसनर विच इज सफ़ी। ये स्वीट हार्ट गाना आपके लिए है।

0: क्या बात है जी, कितना प्यारा सॉन्ग था. और थैंक्स फॉर दिस सजेशन टू सफी. और भी हम ढेर सारे अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स प्ले करने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, कुछ गिव अवेज हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वेदर अपडेट्स भी हैं. तो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM. See you on the other side.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
3: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
4: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
1: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी.
5: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी.
4: ओ वाओ.
1: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. Everything they see, one place, one vibe.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
7: उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
9: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
15: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
16: कौन सा?
15: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
16: अरे सारे तो सेम है.
15: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
16: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल और आप सुन रहे हैं फनिशर रेडियो भी 104.9 एफएम। और वक्त हो गया है अभी एक वेदर पे अपना ना सरसरी निगाह जिसको बोलते हैं एकदम फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आज के मौसम का क्या हाल है। आज डालस में मौसम गर्म रहने वाला है और ह्यूमिड भी रहने वाला है। सुबह से हल्की गर्मी और नमी महसूस हो सकती है और दिन भर टेम्परेचर्स जो है मिड टू अपर 80s फारेनहाइट यानी लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है। ह्यूमिडिटी की वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर वुड बी 90 डिग्री फारेनहाइट या उससे भी ज्यादा लग सकता है। आसमान पार्टली टू मोस्टली क्लाउडी रहने की संभावना है। दोपहर और शाम के समय कुछ एरियाज में आइसोलेटेड शावर्स या थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। हर जगह बारिश नहीं होगी लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला या रेन जैकेट साथ में रखना एक अच्छा आइडिया होगा। ये जो वेदर रिपोर्ट थी ना, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई मलाबार गर्ल्स एंड डायमंड्स और आप उनके जो लेटेस्ट कलेक्शन है वो चेक कर सकते हैं ऑन थ्रू लाइक आई थिंक दे हैव एन ऐप सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड चेक आउट देयर लेटेस्ट कलेक्शंस एंड डिजाइंस।

अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि कभी कभी होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और थोड़ी लेट सा, मतलब थोड़ा लेट सा हो जाता है, तो हम बार बार जो है सर्वर को देख रहे होते हैं, झांक रहे होते हैं कि खाना आया क्या, आया क्या. और जैसे ही खाना आता है तो मेरे दिमाग में यही गाना चलता है, तेरा दीदार हुआ जैसे कि प्यार हुआ. आप सुन रहे हैं फर्नीचर रेडियो विद मी, यानी कि आरजे सिमी. और खाने पीने की बात करें तो पेस्ट्री ईटरी की ज़रूर से ज़रूर याद आ जाती है. उनका सिजलिंग कबाब और फ्लेवरफुल चाट से लेकर जो फ्यूजन बाइट्स बनता है ना, और उनके मॉकटेल्स भी इतने टेस्टी हैं. अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं गाइस, तो ज़रूर ट्राई करें. आप उनका मेन्यू वगैरह देख सकते हैं बाय गोइंग ऑन देयर वेबसाइट विच इज़ page3eatery.com, और ये लोकेटेड है एट हब 121. यहाँ आप जा सकते हैं फॉर ब्रंच, फॉर लंच, डिनर, डेट नाइट, या फिर अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कोई फूडी मीटअप प्लान करना है तो देन दिस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट फॉर दैट टू. और वहां पे आपको मिलेगा परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी, वाइब्रेंट वाइब्स, सब कुछ. इतना तो बोल दिया है, अब तो आपको जाना ही चाहिए, एंजॉय करना ही चाहिए. क्या बोलते हैं?

कह दिया कह दिया, यू आर माई सोनिया। जी हाँ, कह दिया मैंने भी, और इतना भी कह दे रही हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं मुझे ऑन माई शो आफ्टरनून अड्डा, ओनली ऑन फनेजर रेडियो 104.9 FM। मेरा और आपका साथ अगले 20 मिनट तक है। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। गिव अवे राउंड का क्वेश्चन बस अभी पूछने वाली हूँ मैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि ये जो शो है ना, दिस इज ब्रॉट टू यू बाई उमर ख्वाजा विद द ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आप या आपके किसी जानकार किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं या फिर किसी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में फंस गए हैं और उनको इंश्योरेंस कंपनी से डील करना मुश्किल हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो डू नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि अटर्नी उमर ख्वाजा लेके आए हैं अपने सोल्यूशंस एंड ही विल हेल्प यू फाइट योर केस एंड ऑल्सो हेल्प यू गेट दी कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और आपको ना तब तक पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री कंसल्टेशन विद अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम, देन यू कैन कॉल हिम एट 4693005046 या फिर आप उनको विजिट करें ऑन attorneyomer.com। और वक्त आ गया है गिव अवे राउंड का, क्वेश्चन में पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक एक गाने सुनते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछती हूँ, थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।

जैसा कि मैंने आपको इस गाने के पहले बताया था कि मैं अब जा रही हूँ गिव अवे राउंड करने के लिए, और सवाल हाजिर है, तैयार है। आपको इनाम भी बता देती हूँ, अगर आपने सही जवाब दिया बाई कॉलिंग मी फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। आर यू एक्साइटेड? पूछू मैं सवाल? मैं आपको एक डायलॉग दे रही हूँ और आपको उसका मूवी का नाम बताना है और किस एक्टर ने ये डायलॉग बोला है वो बताना है। ईजी? ओके, तो डायलॉग ये है कि उठा ले रे बाबा उठा ले। Isn't this interesting? I know you got it. अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कॉल मी एट 972-235-5555 पे।

थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने भी अभी मुझे कॉल करके इस डायलॉग का आंसर बताया. डायलॉग ये था कि उठा ले रे देवा उठा ले, और ये है बाबूराव जी फ्रॉम परेश रावल जी का ये डायलॉग है, और ये मूवी है हेरा फेरी. जी हाँ, और इस गिव अवे का जो सही जवाब दिया, एक्चुअली सही जवाब सबने दिया है, लेकिन आज के लकी विनर है सत्येन जी. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सत्येन जी, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. फन पिज्जा किचन लेके आए हैं फ्लेवर और फायर का अमेजिंग मिक्स. अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेज लवर हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए अचारी पनीर पिज्जा विच इज पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच. और इसके जो सॉफ्ट पनीर ऐसे स्पाइसी मैजिक में मिक्स होते रहते हैं ना, मजा ही आ जाता है, मतलब ओए होए होए होए होए. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट लवर हैं, तो तंदूरी चिकन पिज्जा आपके लिए परफेक्ट, आई मीन अमेजिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये है प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बर्ड्स. अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पसंद है तो भी आपके लिए एक स्लाइस है, या फिर आपको माइल्ड, यू नो, वेल क्यूरेटेड बैलेंस्ड लाइफ की तरफ बैलेंस खाना भी चाहिए तो भी आपके लिए एक स्लाइस इंतजार कर रहा है कि आओ आओ मुझे प्लीज खा लो, मैं बहुत टेस्टी हूँ. आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग देयर मेन्यू और एनी अदर थिंग, देन यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज फन पिज्जा किचन डॉट कॉम. और मीनवाइल हेरा फेरी की बात की है, तो हेरा फेरी का ये फेमस सॉन्ग लगाना तो बनता है.

0: What a song, what a vibe. I just loved this song. I hope you loved it too. और मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं उसको ना पुराने टाइप से करना चाहती हूँ, क्योंकि आज थ्रोबैक थर्सडे मनाया भाई हमने, तो ध्यान से सुनिए ठीक है। एकदम आकाशवाणी स्टाइल में बोलने वाली हूँ मैं। क्या आप भी अपने मॉर्टगेज को 10 साल या कम समय में ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बिजनेस एक्सपेंस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में तब्दील करना चाहते हैं? या फिर क्या आपने इन बॉटम लाइन को बूस्ट करना चाहते हैं थ्रू इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी? अगर ऐसा है तो आप कॉल कर सकते हैं जेम्स को एट 3218887345, या फिर आप विजिट करें connectingamericafinancials.com। अच्छा था, मजा आया आपको इनको सच में अगर कांटेक्ट करना है तो द नंबर वॉज राइट, दी वेबसाइट वॉज राइट, एंड यू कैन स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इनटू इनकम। और अब ना मेरे जाने का वक्त हो रहा है, मुझे आपसे बाय बाय कहना पड़ेगा, लेकिन मैं आऊंगी, दोबारा हाजिर हो जाऊंगी अगले हफ्ते मंडे को एट 12:30 to 2:30 मेरा शो होता है आफ्टरनून अड्डा। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है GimmeSimi GIMMISIMI। और जाना है यार, जाने का वक्त हो गया है, बट आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग बजते रहेंगे, बिकॉज दिस इज फनेशियर रेडियो 104.9।
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कम्फर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुल्चा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with Age Fintax's advisory services.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Documents ya parcel bhejni hai?
10: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग,
7: और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

और अगर आप भी कुछ नया और पुराना दोनों ही अंदाज ढूंढ रहे हैं ज्वेलरी को लेके, तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज हियर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो कि प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड हैं इन फ्रिस्को, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको वो कहते हैं ना एलिगेंट टाइमलेस ज्वेलरी भी मिलेगी और साथ ही साथ नया अंदाज, नया तरीका ज्वेलरी पहनने का, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है. विद स्टनिंग डायमंड्स, ब्यूटिफुल रिंग्स, इयररिंग्स, डार्जलिंग necklaces, contemporary diamond styles, मतलब जो भी आपका इवेंट है, engagement ceremony है, anniversary है, celebration है, or you just want to treat yourself, Malabar Gold and Diamonds is the place to go in Frisco. और जो best बात है वो है कि अब उनकी app available है, so आप अपने app store पे जाइए, Malabar Gold and Diamonds की app download कीजिए and check out the latest collection, updates and so much more that is available on their app. This is Malabar Gold and Diamonds.

अनु मलिक और हिमा सरदेसाई की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना पिक्चराइज्ड ऑन सलमान खान एंड उर्मिला। और जी बस अराउंड 10 मिनट रह गए हैं ब्रेक पे जाते हुए और 3 बजे ऑनवर्ड्स आपके लिए लेके आऊंगी फूड जंक्शन। तैयार रहिए, वी आर गोइंग टू डू कायरो इजिप्ट एपिसोड 2। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल इवेंट हो रहा है डालस में। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया तो यू स्टिल हैव अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, यानी कि अभी दो घंटे बाकी हैं, जरूर जाइए। दिस इज रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस जहां समर किक ऑफ इज बैक। तो कल से शुरू हो चुका है ये इवेंट, कल और आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। एंड दिस टाइम इट इज बिगर बेटर एंड द एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली ट्रॉपिकल। क्रेजी डील्स हैं जी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, गिव अवेज, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट सारा दिन चलते रहेंगे। वेंडर्स से मिलने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इफ यू आर अ स्टोर ओनर, दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू बी। डिस्कवर बेस्ट सेलर्स, स्टॉक अप लाइक यू हैव नेवर स्टॉक्ड अप बिफोर। दिस इज रवीज इम्पोर्ट हाउस। They are located at 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas 75229. अभी दो घंटे और 9 मिनट बाकी हैं इस इवेंट को जो बाकी चल रहा है। तो अगर आप अब तक नहीं गए तो जल्दी से, अगर आप गाड़ी में हैं, गाड़ी मोड़िए और पहुंच जाइए 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas 75229.

ताल से सुन रहे थे आप ये गाना उस जमाने में, मतलब आई गेस 1999 में आई थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स होती थी ताल, मुझे बहुत अच्छी लगी ऐश्वर्या राय उसमें, एंड स्पेशली द स्टोरी वाज क्वाइट इंट्रीगिंग. और ना सिर्फ ये कि ताल सुपर हिट हुई मूवी, बल्कि ताल की स्टोरी पे बहुत सारे इंडियन ड्रामास भी बने. और जैसे एक दो, एक तो शायद NDTV पे आता था और काफ़ी हिट हुआ, आई थिंक कितनी मोहब्बत है ये ड्राम था ड्रामे का. अगर आप इंडियन ड्रामास देखते हो तो आपको डेफिनेटली याद आएगा कि ये ताल की स्टोरी पे बना हुआ था. अच्छा जी, अब हम इस गाने के साथ जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक But we will officially enter into our Food Junction segment. Before that, I must tell you this part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. Offer karte hain innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as business. So aap individually apne liye karwana chahte ho ya business owner ho, AG Fintechs has a solution for you. They are trusted, efficient, and they get you ready for your future. To unhe call kijiye 469-942-9888 ya phir unko visit kijiye unki website, which is AG Fintechs.com.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: Kyun?
3: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: Achha, to seedha wahi le chalo.
4: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
3: Your new destination has arrived.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: के टू ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roast tazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara, now Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your फर्स्ट विजिट।
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
11: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
11: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
11: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
16: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसे
17: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
18: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
17: सच में, बिल्कुल घर जैसा।
18: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
19: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
9: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
5: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया।

जी हाँ, दस्तरखान सेट है और आप एंटर कर चुके हैं द फूड जंक्शन सेगमेंट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. वंस अगेन थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. मैं हूँ किरण आपके साथ 4:30 बजे तक लेकर आऊंगी एपिसोड 2 ऑफ फूड जंक्शंस. कायरो, कायरो इजिप्ट में थे हम जी लास्ट टाइम. द सिटी ऑफ पिरामिड्स, द सिटी ऑफ नाइल, द सिटी ऑफ एंशंट हिस्ट्री और एक इनक्रेडिबल फूड कल्चर का शहर जहां गली गली से उठती है फ्रेश बेक्ड ब्रेड की खुशबू और बाजारों में मिलती है जी हर जगह पे एक नया टेस्ट, एक नया फ्लेवर, एक नई कहानी और साथ एक बहुत Purani history. From traditional Egyptian breakfast to legendary street food under the city lights, Cairo is truly the feast for the senses. तो पिछले हफ्ते हमने बहुत कुछ कवर किया था कायरो में, जैसे कि history of Cairo food, और मैंने आपको ये भी बताया था कि local Cairo favorite foods कौन से हैं, जैसे कि कोशारी, जो कि rice, lentils, macaroni, chickpeas का एक combination होता है, ऊपर से tomato sauce, crispy fried onions, garlic vinegar sauce का magic, और बन जाता है कोशारी, जो कि है कायरो की सबसे पॉपुलर डिश. इफ यू आर विजिटिंग कायरो, यू कैन नॉट कम बैक विदाउट टेस्टिंग कोशारी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिस इज वेजिटेरियन फ्रेंडली, सो अमेजिंग हो गया ये बात. उसके बाद जो नंबर 2 लोकल फेवरेट था कायरो का, दैट इज फलाफल, जो कि जरा डिफरेंट किस्म का फलाफल है, नॉट द फलाफल जो हम रेगुलर खाते हैं जी. ये जो है वो तामिया इसे कहा जाता है, जो कि चिक पीस के बजाय फावा बीन्स से बनता है. उसके बाद लोकल फेवरेट्स ऑफ कायरो में कोफ्ता और कबाब्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं लोकल फेवरेट्स में, एज वेल एज टूरिस्ट, जो मैं और आप टूरिस्ट बन के जाते हैं. और फिर फुल मिडामीज, ये तो नाम पता नहीं क्या क्या होते हैं इनके. अच्छा जी, ये जो है वो फावा बीन्स होते हैं जो कि स्लो कुकड होते हैं ऑलिव ऑयल, लेमन, क्यूमन और अर्ब्स में, जैसे हम, मुझे लगता है, चना मसाला बनाते हैं, वैसे ही ये लोग फावा बीन्स मसाला बनाते हैं. तो उसके अलावा अनदर फेवरेट लोकल फेवरेट डिश ऑफ Cairo, which we must try as a tourist as well, is basbousa. ये होता है जी एक केक, this is dessert dish. ये केक होता है जो कि sugar syrup में dip होता है, soft, moist, sweet, और हर bite में मतलब melt in your mouth. और मजे की बात होती है कि ऊपर से इसमें almonds या फिर coconut का, वो कहते हैं ना, छिट्टा मार दिया या छिड़क दिए सारे, तो उस तरह हो जाता है. तो ये बहुत ज्यादा popular मीठा है Cairo का. इसके अलावा हमने Cairo के कुछ cafe cultures discuss किए कि वहां पे बेहतरीन cafe कौन से हैं once you are visiting Cairo, और Cairo का food style क्या है. अब इस गाने के बाद top street food के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से spots हैं जो कि top street foods में locate किए जाते हैं. अब जब हम वापस आएंगे तो हम शुरू करेंगे the desi vibes of Cairo. Stay tuned.

जी हाँ, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, एज देसीज कभी ना कभी देसी खाने का मतलब 2-3 दिन बाद बस हो जाती है और बंदा कहता है कि अगर कुछ देसी खाने को हो जाए, समथिंग लाइक मे बी यू नो चावल और दाल और रोटी और समथिंग लाइक दैट. तो कायरो में भी देसी फ्लेवर्स जी बिल्कुल छाए हुए हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, और स्पेशली कायरो में तो बिल्कुल जो है आपको मिल जाएगा आपकी पसंद का देसी खाना. तो ये शहर सिर्फ पिरामिड्स और कोशारी तक महदूद नहीं है, यहां भी आपको मिलता है घर का टेस्ट. अच्छा, देसी फूड जो कायरो में है, सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट बात मैं आपको ये बताऊं कि कायरो में देसी फूड सीन लंदन या फिर दुबई जैसा ह्यूज नहीं है. जैसे अब हम अभी बात कर रहे थे, जब पिछले एपिसोड में हमने लंदन किया, उससे पहले हमने दुबई किया, तो मतलब भरा हुआ है देसी फूड. मतलब वो तो उनका तो खाना ही इन्फ्लुएंस अब देसी फूड से हो गया है. लेकिन कायरो में ऐसी कहानी नहीं है, लेकिन स्टेडिली देसी जो सीन है कायरो में वो ग्रो कर रहा है और अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स डेफिनेटली मौजूद हैं. फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक कायरो में देसी कुजीन का सीन लो की बट ग्रोइंग है. लो की, मुझे आजकल के बच्चों की लो की वर्ड याद आ गया. सो मतलब यू नो इट इज ग्रोइंग. और सिटी में काफी हिडन जेम्स मिलते हैं जो ऑथेंटिक फ्लेवर्स सर्व करते हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्शियंस को स्पाइसी और फ्लेवरफुल फूड ऑलरेडी पसंद है. उनका फूड भी अच्छा होता है, स्पाइसी होता है, फ्लेवरफुल होता है, इसलिए उन्हें देसी कुजीन का टेस्ट नेचुरली अट्रैक्ट करता है. तो कायरो में आपको क्या क्या मिलेगा वो बताऊंगी इस गाने के उस पार.

जी हाँ, तो आपको क्या मिलेगा कायरो में अगर आप देसी खाना ढूंढ रहे हैं? तो आपको हर तरह की चीज़, जैसे कि बिरयानी मिलेगी, कढ़ाई मिलेगी, सीख कबाब्स मिलेंगे, बटर चिकन, नान और तंदूरी रोटी, चाट स्टाइल स्नैक्स भी हैं। ऑल दो लिमिटेड हैं, लेकिन अवेलेबल ज़रूर हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट स्पॉट, वो कहते हैं ना, यू हैव टू लुक फॉर इट। तो ढूंढने से तो जी खुदा भी मिल जाता है। तो ये तो सिर्फ स्नैक्स और देसी खाना है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टेस्ट यहाँ पे, जो रिव्यूज़ मैंने पढ़े या जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रही थी, तो लोग ये कहते हैं कि सरप्राइजिंगली द टेस्ट इज़ वेरी क्लोज टू होम। कुछ प्लेसेस थोड़ा माइल्ड भी बनाती हैं, जाहिर है लोकल प्लेट को या लोकल पैलेट को सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे प्रॉपर देसी खाना विद प्रॉपर देसी स्पाइस लेवल्स मिलता है। सो कायरो में देसी खाना कौन खाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कायरो में मोस्टली इट्स यू नो अरबिक डोमिनेटेड फूड होता है। सो कायरो में देसी खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स हम जैसे टूरिस्ट जो देसी खाने को पसंद करते हैं, हमारा कल्चर है देसी खाना। उसके अलावा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली एक्सपैट्स, उसके साथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हुआ देयर, एम्बेसी स्टाफ देसी खाना खाता है ऑब्वियसली, और उनके लिए रेस्टोरेंट्स का मतलब है घर का सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कई बार वो अकेले होते हैं तो इन्हीं जगहों से जाके वो खाना खाते हैं। इसी के साथ इजिप्शियन लोकल्स भी एंजॉय करते हैं देसी खाना, क्योंकि स्पाइसेस उनके लिए अनफेमिलियर नहीं है, राइस बेस्ड डिशेस से वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी राइस बेस्ड डिशेस होती हैं और उनकी भी, और ग्रिल्ड मीट्स उनके लिए कुजीन का हिस्सा है। लेकिन बटर चिकन, यू नो टिक्का या फिर नान, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, वेरी स्पाइसेस डिशेस, थोड़ी सी नीच प्रेफरेंसेस होती हैं। दिस इज़, मैं आपको बता रही हूँ, एक फूड कल्चर ऑफ कायरो, और स्पेशली जो देसी फूड कल्चर के अराउंड कायरो कैसे मूव करता है। और साथ ही साथ एज अ टूरिस्ट, यानी कि मैं और आप, तो टूरिस्ट जो फेमिलियर फूड चाहते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उनका भी लोकल्स ट्राई कीजिए और ये भी ट्राई कीजिए। और जो है कुछ थोड़ी सी आपको देसी फूड मार्केट के बारे में बताऊंगी, लेकिन वो सब इस गाने के उस पार।

अगर आप ये सोच रहे हैं कि कायरो में कोई लिटिल इंडिया या फिर मिनी पाकिस्तान जैसा एरिया होगा, जैसे कि लंदन में है या फिर दुबई में है, तो जवाब है नॉट एग्जैक्टली. थोड़ा सा स्प्रेड आउट है कायरो का देसी सीन. जैसे कि जमलिक एक एरिया है, एक्सपैट फ्रेंडली एरिया, यहाँ पे आपको कुछ देसी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. मादी इसको कहते हैं जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हब, हेयर यू विल फाइंड सम देसी फ्लेवर्स. डाउन टाउन में मिलेंगे आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कुछ देसी दुकानें हैं या देसी फ्लेवर्स की आपको जगहें मिलेंगी. फाइन डाइनिंग से लेके मिड रेंज रेस्टोरेंट्स, साथ ही साथ हिडन जेम्स विच आर फैमिली फ्रेंड फैमिली रन प्लेसेस और ऑथेंटिक फ्लेवर्स, हर तरह की देसी कुजीन आपको मिलेगी. देसी रेस्टोरेंट्स कायरो में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं एज द सिटीज फूड सीन इवॉल्व्स और लोग नए फ्लेवर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं. चंद रिकमेंडेशंस के साथ हम इस सेगमेंट के आगे बढ़ेंगे. और ये रिकमेंडेशंस हैं सम ऑफ द मोस्ट यू नो नेम्स दैट वर एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल हु हैव बीन टू कायरो. जो मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी उनमें नाम आए हैं. नंबर वन, महारानी रेस्टोरेंट का. दिस इज़ एन ऑथेंटिक इंडो पाक कुजीन फॉर, और इसका नाम जो है काफ़ी बार लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं. बटर चिकन, टिक्का और करीज, रिच क्रीमी और फ्लेवरफुल खाना है यहाँ का. और यहाँ हर बाइट में वही वार्म्थ मिलती है जैसे कि आपको घर जैसे खाने में मिलती है, जो लोगों का कहना है. आई थिंक लोग इतना ज़्यादा उदास होते हैं देसी फूड से कि उनको जब इतने दिनों बाद देसी फूड मिलता है तो उनको सच में घर जैसे खाने की याद आ जाती है. अच्छा, एक और रेस्टोरेंट जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ कराची ग्रिल. यहाँ आपको मिलेगा बारबेक्यू और कढ़ाई बिल्कुल आपकी पसंद की. तो ये जगह मस्ट ट्राई है. स्मोकी कबाब, स्पाइसी कढ़ाईज और फिर प्रॉपर देसी वाइब्स ऑफ कोर्स. और एक और रेस्टोरेंट जो बार बार मेरी नज़र से गुजरा व्हेन वी टॉकिंग अबाउट देसी फूड सीन इन कायरो, दैट इज तंदूरी हाउस कायरो. नान्स, हांडीज, तंदूरी डिशेस के लिए जाना जाता है ये. रिच ग्रेवीज, प्रॉपर कम्फर्ट फूड है ये कायरो का. और बार बार देसी जो है वो इस खाने का, इस जगह का जिक्र करते हैं. अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी द वेजिटेरियन सीन ऑफ कायरो. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कहाँ जाना है और क्या खाना है.

0: All right, we are about 30 seconds away from the break. तो break पे जा रहे हैं हम. आज हम Cairo को discuss कर रहे हैं और अभी हमने देसी food scene of Cairo के बारे में बात की. और मुझे हमेशा आप कहते हैं कि जब आप देसी food की बात करती हैं तो थोड़ी vegetarian की भी बात किया करें, because vegetarian lovers कहाँ जाएं. तो खास आपके लिए ये segment vegetarian lovers in Cairo, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, वो सब आपको बताऊंगी इस break के उस पार. और उसके बाद बताऊंगी कि मीठे में आपको Cairo में क्या खाना है. बने रहिए मेरे साथ. दिस इज फूड Junction right here on Suneri Kiran.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: मामू, देखो क्या हो गया.
4: ओ, क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
4: ओए, जर्मन का कमाल है.
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
4: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
8: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
9: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan, dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. To waqt hai sahi disha ka.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
17: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
17: I'm Rahul. नाम तो सुना होगा।
18: जी नहीं।
19: क्या आपके बिजनेस के साथ भी ऐसा होता है? तो जरूरत है उसे प्रॉपर प्रमोशन की। It's time to advertise your business with Fun Asia Network. Radio, digital, events, community outreach, you name it, we have it. सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। Call 469-424-3188 to advertise with us. Fun Asia Network, the voice behind your growing businesses.

swagat. This is Food Junction right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Fun Asia Radio sun rahe hain aap. Channel bilkul sahi hai. Change mat kijiye. Sunte rahiye. Abhi hamara about 45 minutes baki hain jab main aapko batane wali hoon the food journey of Cairo. Bahut kuch humne discuss kar liya hai jaise ki unke local favorites, kya kya wahan pe khana chahiye, unki local markets aur uske saath veg desi specials. Ab hum badh rahe hain vegetarian special pe. Agar aap vegetarian hain aur aap soch rahe hain ki Cairo mein aapke liye kya options हैं तो good news ये है कि Cairo is surprisingly quite vegetarian friendly क्योंकि Egyptian cuisine का base ही है simple natural और plant based ingredients यानी कि अगर इसलिए यहाँ जो vegetarian लोग हैं उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती बल्कि काफी exciting हो जाता है और कितनी सारी हमने ऊपर उनके local favorites में dishes जब हम discuss कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि ये तो वेजिटेरियन फ्रेंडली है कम्प्लीटली सो Cairo का जो वेजिटेरियन सीन है वो क्यों स्पेशल है क्योंकि यहाँ का खाना हैवी सॉसेस या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स पे डिपेंड नहीं करता इंस्टेड फ्रेश वेजिटेबल्स बीन्स ऑलिव ऑयल और हर्ब्स इज द नेचुरल वे ऑफ क्रिएटिंग द फ्लेवर्स और सबसे खास बात कि हर डिश में सिंप्लिसिटी एंड यू नो अमेजिंग सोल होती है तो अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आपको यहाँ पे जो मस्ट हैव्स हैं उनमें फुल मेडामीज ये हमने ऊपर भी बात की थी मतलब उनके लोकल फेवरेट्स में दिस इज कॉल्ड द कम्फर्ट किंग सबसे पहले दिस फुल मेडामे जो कि स्लो कुक्ड फावा बीन्स हैं ऑलिव ऑयल लेमन जूस गार्लिक और क्यूमन के साथ बनते हैं और ये डिश इतनी सिंपल होती है कि मतलब बनाना तो खैर बहुत ही आसान है और इसको जितनी सिंपल है ये उतनी जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं लेकिन इतनी फ्लेवरफुल होती हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज लोकल्स इसे रोज़ ब्रेकफास्ट में खाते हैं और वार्म बुलादी ब्रेड के साथ खाते हैं और बिल्कुल घर जैसा कम्फर्ट है ये तो मुझे मैंने ये खाया नहीं है कभी बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम चना मसाला बना के खाते होंगे पूरी के साथ वैसे ही लोकल्स इसे फावा बीन्स को मसाला बना के खाते हैं ब्रेड के साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एज अ वेजिटेरियन खानी चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगी लेकिन इस गाने के उस बात

जी हाँ, इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू आर इन कायरो तो हम बात कर रहे हैं फुल मटामेज, उनके जरूर खाइए. दिस इज स्लो कुक्ड फावा बीन्स, अनदर डिश दैट इज मस्ट ट्राई. और दूसरा ये कि वेरी यू नो इजीली अवेलेबल इन कायरो एंड दैट इज फलाफल, जो कि उनका वर्जन है फलाफल का, तामिया इसको ये कहते हैं. दिस इज अ क्रिस्पी डिलाइट और ये चनों से नहीं बल्कि फावा बीन्स से बनता है. मैं देख रही हूँ कि कायरो में फावा बीन्स का इस्तेमाल ज्यादा है, तो चिकपीस की जगह फावा बीन्स, इसीलिए इसमें इसका कलर जो है वो अंदर से हल्का हल्का ग्रीन होता है. अगर आप अगली बार कुछ ग्रीन ग्रीन देखें तो जान लीजिए कि इसमें कहीं फावा बीन्स डाले हुए हैं. बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, अर्बी और फ्लेवरफुल. पीता ब्रेड, ताहिनी और सैलेड के साथ खाया जाता है. दिस इज अ परफेक्ट क्विक मील फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेजिटेरियन ऑप्शन. इसके अलावा There are meze platters, variety on one table. जी, vegetarian food lovers के लिए Cairo का सबसे fun experience है meze platters. छोटी छोटी dishes का combination, जैसे कि hummus, baba ghanoush, tahini dips, pickles, fresh salads, olives. एक table पर इतनी सारी variety और हर bite अलग टेस्ट देता है. Obviously, इतनी different different चीजें हैं, अलग अलग तरीके से बनी है, तो बिल्कुल अलग जैसा flavor. और फिर Another very interesting dish if you are a vegetarian lover and that is baba ganoush. Smoky magic hai ji ye. Roasted eggplant hota hai ye. Dipped in tahini, garlic aur phir lemon ke saath. Smoky, creamy aur slightly tangy. That is what baba ganoush is all about. Bread ke saath khate hain. Ye meze platter pe bhi hota hai. Aur aap alag se bhi baba ganoush ki dish offer kar sakte hain. Ab is gaane ke baad jab hum wapas aayenge, actually ek aur cheez ke saath, fresh salads aur grilled vegetables to Cairo mein bahut hi zyada mashhoor hain. तो कायरो की सैलड्स भी बिल्कुल सिंपल फ्लेवर्स की तरह सिंपल हैं. टमेटोज, क्यूकम्बर सैलड्स, पार्सली बेस्ड डिशेस, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स विद ऑलिव ऑयल, लाइट, फ्रेश और परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो आपको एज अ वेजिटेरियन लवर देते हैं बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट. आफ्टर दिस सॉन्ग व्हेन आई विल कम बैक, वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न वेजिटेरियन एंड वीगन ट्रेंड्स इन कायरो.

0: कुमार सानू की आवाज में
1: ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे।
2: अच्छा ये गाना मैं सुन रही थी आँख मारे तो उससे मुझे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आँखों से रिलेटेड याद आ गई, सो आई कांट मूव ऑन बिफोर आई टेल यू दैट। और वो ये कि आप अगर चश्मा लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, तो जी इट माइट जस्ट बी टाइम टू से गुड बाय टू इट बिकॉज हेयर समथिंग यू मे नॉट नो। लेसिक इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टुडे एंड यू कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दैट। फॉर दैट डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला जो कि एक फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन है एंड द फाउंडर of Visionary Eye in Plano. His approach is very simple. He will educate you first and then give you or, you know, make you capable of making that decision for yourself with confidence ki kya aapko LASIK chahiye ya nahi. To learn more about your options and see whether you are a candidate or not, aap Dr. Shehzad Batliwala ke Visionary Eye that is located in Plano mein contact kijiye. The number is 214-972-2020. 214-972-2020 उनका नंबर, या फिर LASIK-Plano.com इज द वेबसाइट, LASIC-Plano, LASIC-Plano.com. And don't forget to mention Funasia 2020 to receive a free consultation. तो उन्हें कॉल कीजिए, Funasia 2020 मेंशन कीजिए, फ्री कंसल्टेशन लीजिए एंड सी इफ यू आर द नेक्स्ट कैंडिडेट विजनरी आई। दिस इज हेल्पिंग यू see your future more clearly. And with that, हम आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे थे modern vegetarian trends and vegan trends of Cairo. और जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वीगन कैफ़ेज़, ऑर्गेनिक बेकरीज़ हैं कायरो में, हेल्दी बोल्स एंड स्मूदीज़ हैं। यंग क्राउड और हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो इन ऑप्शंस को ऑब्वियसली बहुत पसंद करते हैं। सो व्हाई यू लव वेजिटेरियन फूड इन कायरो, बिकॉज इट्स हेल्दी, इट इज़ अफोर्डेबल एंड इट्स ईजीली अवेलेबल। कोई ऐसी आपको ढूंढने के लिए कोने खुदरों में नहीं जाना पड़ता कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, इट्स रेडिली अवेलेबल। नेचुरली वेजिटेरियन तो मतलब कोई आपको मॉडिफिकेशंस नहीं है, और क्योंकि वो लोग खुद इतना सब्जी खाते हैं इसीलिए आपके लिए बहुत आसानी है, फ्लेवरफुल होता है विदाउट बींग हैवी। सो गाइज, कायरो का जो वेजिटेरियन फूड है वो आपको सिखाता है कि सिंपल इन्ग्रीडियंट्स कितने ज़्यादा पावरफुल और टेस्टी हो सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या सिर्फ कुछ लाइट और हेल्दी करना चाहते हैं तो कायरो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ का वेजिटेरियन फूड सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि खुश भी रखता है। अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग इनटू द एंडिंग ऑफ कायरोज जर्नी। आई एम गोइंग टॉक टू यू अबाउट द डिजर्ट्स एंड द कैफेज जो कि कायरो में आपको खाने हैं, मतलब मीठा कायरो आफ्टर दिस।

और जी खाने पीने का टाइम है खाने के बजाय उनके दिल पे छुरियां चल रही हैं. बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ दिलेर मेहंदी साहब जो आप सुन रहे थे. अच्छा अब जो स्वीट कायरो की हम बात कर रहे हैं डिजर्ट्स इन कैफे, तो अगर आप स्वीट लवर हैं तो कायरो तो मतलब एक ड्रीम डेस्टिनेशन है. यहाँ डिजर्ट्स सिर्फ खाए नहीं जाते बल्कि सेलिब्रेट किए जाते हैं. और सबसे खूबसूरत बात कि ये डिजर्ट्स अक्सर फैमिली गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स और लेट नाइट आउटिंग्स का हिस्सा होते हैं. और हर जो मिठाई में जो डिज़र्ट यहाँ पे मिलता है उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, ये बात जब भी हम कायरो की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार कुछ देर से मैंने बोला नहीं कि ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम एक ऐसे शहर में हैं और ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जिसकी हज़ारों साल की हिस्ट्री है. मतलब ऐसा नहीं कि चंद कोई डेकेड्स पुरानी हिस्ट्री हो, कोई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी हिस्ट्री, हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ट्रेडिशन कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है. दैट इज़ व्हाई कायरो इज़ दैट एंशिएंट सिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और सम आउटस्टैंडिंग डिज़र्ट्स जो कायरो में खाई जाती हैं उनमें द नंबर वन डिज़र्ट जिसको खाने वाले बहुत पसंद करते हैं चाहे वो लोकल्स हों चाहे वो टूरिस्ट हों, एंड दैट इज कुनाफा, द स्टार ऑफ कायरो स्वीट्स. सबसे पहले कुनाफा, ये डिजर्ट लिटरली एक एक्सपीरियंस है. आपने यहाँ भी आई एम श्योर खाया होगा. कुनाफा तो हर जगह बहुत पॉपुलर है. क्रिस्पी श्रेडेड पेस्ट्री, अंदर से क्रीमी फिलिंग या फिर कस्टर्ड क्रश्ड नट्स ऊपर डले होते हैं, ऊपर से वार्म शुगर सिरप ड्रिजल किया जाता है. और जब एक बाइट आप लेते हैं बाहर से क्रंची अंदर से गूई एंड सॉफ्ट, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट. आई लव कुनाफा, enjoying eating it like यहाँ डैलस में भी बहुत सारी जगहें हैं जो कुनाफा देती हैं. तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो कायरो का कुनाफा होगा वो कैसा होता होगा. तो अभी मैं बहुत जल्द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर खोलने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को इन्वाइट करूँगी कि आप आके मुझे बताइए इफ़ यू विजिटेड इन कायरो, यू आई वुड लव टू टॉक टू यू. सो अच्छा, कुछ वर्जन में जो कुनाफा है उसमें क्रीम होती है, कुछ में चीज़ होता है और कुछ में पिस्टैशियोज़ या फिर आलमंड्स होते हैं. और स्पेशली रमज़ान के दौरान कुनाफा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है. इसी के साथ अनदर डिजर्ट दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर इज बकलावा. लेयर्स ऑफ यू नो थिन फ्लेकी पेस्ट्री की लेयर्स, बीच में फाइनली चॉप्ड नट्स और ऊपर से हनी या फिर शुगर सिरप. बकलावा तो आप सभी ने खाया होगा, मतलब देर इज नो दो राय कि किसी ने बकलावा ना खाया हो. और फिर रोज बेल लबन, ये है जी कम्फर्ट इन अ बोल, एक सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग डिजर्ट. राइस पुडिंग होती है मिल्क और शुगर से बनी हुई चावलों के साथ, जैसे हमारी खीर होती है, एक क्रीमी स्मूथ डिजर्ट. ऊपर से सिनेमन या नट्स स्प्रिंकल किए जाते हैं और ये डिजर्ट फैंसी नहीं होती, जैसे हमारी खीर बहुत सिंपल है फैंसी नहीं है, बट इट इज फुल ऑफ फ्लेवर. इसी तरह रोज बेल लबन जो है वो डिजर्ट आपको इंस्टेंट कंफर्ट देता है और नॉस्टैल्जिया. विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू दिस सॉन्ग, देन अ शॉर्ट ब्रेक, एंड देन वी विल कम बैक एंड आई विल ब्रिंग यू द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर.

0: Stamps.com. Some restrictions apply. Equal housing lender. NMLS 334616. Division of Brazos National Bank.
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
8: चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry. I've been researching retirement planning.
11: Oh, really? Where?
10: Google, YouTube, a guy on TikTok.
11: Or you could just talk to WealthActive.
10: What's the difference?
11: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
12: Wealth Tactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
13: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

जब हम कायरो का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आता है पिरामिड्स, नाइल रिवर, ग्रैंड हिस्ट्री, मतलब सदियों की, हजारों सालों की हिस्ट्री. लेकिन सच ये है कि कायरो की असली जान उसकी हिडन गलियों में, यानी कि छुपी हुई गलियों और लोकल मार्केट्स में बसती है. यहाँ आपको मिलते हैं रियल लोग, रियल यू नो लाइफ, रियल फ्लेवर्स. कोई फिल्टर नहीं, कोई टूरिस्ट पॉलिशिंग नहीं, बस असली कायरो. और चंद एक जगहें जो कायरो में वो इम्प्रेशन आपको देती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाती है खान अल खलीली मार्केट, द सोल ऑफ ओल्ड कायरो. तो ये सिर्फ मार्केट नहीं है जी, ये एक एक्सपीरियंस है. ऑफकोर्स 600 साल पुराना, नैरो लेन्स, लैंटर्न लाइट्स, स्पाइस शॉप्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स. यहाँ चलना मतलब जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो ना, बस यही मतलब है. आपको मिलता है यहाँ पे बहुत कुछ. हर बंदा जो कायरो जाता है वो खान अल खलीली मार्केट का ज़रूर जिक्र करता है कि वी वेंट देयर, वी शॉप्ड देयर, वी गॉट दिस, वी गॉट दैट. यहाँ आपको शॉपिंग तो मिलती है, सुवेनियर्स मिलते हैं, उसके साथ खाने पीने में, चूंकि हम फूड जंक्शन कर रहे हैं तो फ्रेश बकलावा जो यहाँ का खाते हैं वो कहते हैं कि वाह वाह, इससे बेहतर और कभी कुछ नहीं खाया. वार्म कुनाफा, स्पाइसेस और हर्बल टीज, बेक्ड फ्रेश ब्रेड्स और ट्रेडिशनल कॉफ़ी स्टॉल्स, सुना है मैंने, जो रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं कि यहाँ के बहुत मशहूर हैं. इसके अलावा जो एक और मार्केट यहाँ की, कायरो की बहुत मशहूर है, दैट इज सोकल गोमा. इसको कहते हैं द फ्राइडे फ्ली मार्केट. और रियल लोकल वाइब्स अगर आपको चाहिए तो यही जगह है जहां आप, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी. यहां आपको क्या मिलेगा? विंटेज आइटम्स, सेकेंड हैंड ट्रेजर्स, एंटीक्स, क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर. मुझे ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे यही वो जगह होगी जहां आपको मिलेगा अलादीन का चराग, अलादीन का चराग जैसी चीजें, क्योंकि विंटेज आइटम्स हैं, एंटीक्स हैं, तो शायद किसी कोने से मिल जाए आपको अलादीन का चराग. जरूर विजिट कीजिए और चेकआउट करना तो बनता है.

और थोड़ा सा क्लासी और थोड़ा सा काम कायरो अगर आपने देखना है तो जमलक एक जगह है जी. दिस इज द हिडन फूड स्पॉट्स बाय द नाइल. तो दरियाए नील के बीचों बीच यानी कि रिवर नाइल के बीचों बीच एक आइलैंड नेबरहुड है और यहाँ आपको मिलते हैं कोजी बेकरीज, आर्टिसन कैफेज, बुटीक्स, फूड शॉप्स, फ्रेश क्रोसॉन्स, गोरमे डिजर्ट्स एंड मच मोर. यहाँ कायरो का मॉडर्न, रिलैक्स्ड और एलिगेंट साइड आपको नजर आती है और उसी के साथ ओल्ड स्ट्रीट एंड रियल फ्लेवर्स के लिए एक और जगह जो बहुत जानी जाती है वो है बाब ज़वीला एरिया. तो ओल्ड कायरो का असली टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ. फ्रेश बलादी ब्रेड, बेक्ड लाइव स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट साइड फलाफल स्टॉल्स, लोकल स्वीट शॉप्स, 100% ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ कायरो. और अगर आप एक्सपैट एंड हिडन फूड जेम्स की तलाश में हैं तो मादी इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू गो. यहाँ पे मिलेंगे आपको हिडन कैफेज, फ्यूजन रेस्टोरेंट्स, ऑर्गेनिक फूड मार्केट्स और हिडन देसी और इंटरनेशनल स्पॉट्स भी आपको मादी पे मिलेंगे. तो ये है सब आपके लिए. दिस वॉज यू नो आर फूड जंक्शन फॉर कायरो. एपिसोड 2 हमारी खत्म हुई और इसी के साथ अब नेक्स्ट फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को, फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फूड जंक्शन 3 PM टिल 4:30 PM. अब अगले जब जुलाई का फर्स्ट थर्सडे होगा तो आपके लिए दोबारा फूड जंक्शन लेके आऊंगी. एक नए शहर की कहानी करेंगे आपके साथ शेयर.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Aaja meri gaadi mein baith ja.
6: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
7: Wo thoda overheating tha.
6: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो.
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
1: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमे मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
1: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
1: No, not another restaurant again.
11: Dude, it's Page Tree. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
13: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. 0 डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
16: K2 ड्राइव मतलब?
13: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
13: 100%
17: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
18: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
19: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फन एशिया 104.9 FM.

अगर आप किसी कार या अनफॉर्चुनेटली ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो अटॉर्नी ओमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प यू. इट कैन बी अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, सो मेनी निटिग्रिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस. यू रियली डोंट वॉन्ट डू इट अलोन. यू नीड एन एक्सपर्ट attorney in on your side so that they can take care of your case, fight your case for you and get you the best compensation that you deserve. And attorney Omar Khwaja and his team does exactly that. And not only that, you don't have to pay anything until you win. So win-win situation hai aapke liye. Wo kehte hai na ke rahat ka saman hai is situation mein. Agar aap ya koi aapka janne wala is situation se guzar raha hai, to please give attorney Omar Khwaja a call for a free consultation. 469-300-5046 is the number. 469-300-5046, or you can visit their website attorneyomar.com, OMAR, attorneyomar.com. And this segment is brought to you by attorney Omar. And ye traffic update aapko dene lagi hu, aur sabse pehle hame ek collision nazar aa raha hai, that is a very serious collision jo ki hua 35 east at Marseilles Avenue northbound, jiski wajah se ji 1 2 3 4 सात लेन आउट ऑफ 11 लेन्स आर ब्लॉक्ड. तो ऑल्दो अभी घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा हो गए हैं इस इंसिडेंट को, सो आई एम श्योर होपफुली क्लियरिंग अब पॉसिबल है, लेकिन द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई. लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट. देर इज अनदर कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट 6:35 टूवर्ड्स हिलक्रेस्ट रोड eastbound, jiski wajah se three lanes are blocked and including an exit lane. This incident is reported about 20 minutes ago. To yahan pe aapko kafi zyada 6:35 waise bhi kafi traffic wise heavy hoti hai is time pe, aur with this incident it is getting more and more heavier. But these are the only two incidents luckily that I can see on the roads of Dallas right now. This traffic update is brought to you by the law offices of Omar Khwaja.

और इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक ट्रैफिक हो गया वेदर अपडेट. आज है जी थर्सडे जून द 4th 4:47 पीएम इन द स्टूडियो एंड इस वक्त सिटी ऑफ मिकिनी में है 87 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 92 राइट नाउ. दिन रहा मोस्टली क्लाउडी, 40% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स रहे जो कि आप देख भी रहे होंगे. कुछ कुछ जगहों पर बारिश हुई, कुछ जगहों पर नहीं हुई. हाईज इन द मिड 80s. जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी विद 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स एंड लोज इन द lower 70s. Pollen count aaj ka 5.2, which is medium. Grass, hickory, pecan and oak is what's bothering where pollen is concerned. UV index is 10, which is very high. Keep your sunscreens handy. Keep yourselves hydrated. Garmi mein bahut zyada zaruri hai. Sunrise aaj ka hua 6:17 am pe, jabki aaj ka sunset hoga 8:32 pm. That was your weather forecast for today.

And it is almost time for a wrap from my side. But before that, as promised, gold price update aapke liye lekar aayi hoon ji. Is waqt, according to goldprice.org, 1 ounce sone ki keemat hai $4,475.19. Jabki 1 gram sone ki keemat right now is $143.88. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $1.17 का इजाफा देखने को मिला, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $36.34 का इजाफा देखने को मिला. सो दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. एंड विद दैट इट इज टाइम फॉर मी टू से माय बायस टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन टुडे ऑन आवर शो. एंड टुमारो गाइस इट इज फ्राइडे. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. 3 PM टू 4:30 PM आई विल ब्रिंग किड्स जंक्शन फॉर यू. विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव एंड योर रिक्वेस्ट लाइव. From 2:30 till 3 PM, we will bring you Mixpot. I will bring you Mixpot. Kuch naye, kuch purane gaane. 3 to 4:30, Kids Junction. 4:30 onwards till 5, lots of information. Traffic, currency, weather, gold price. Bahut kuch mere paas aapke liye. Hamesha afternoon drive time with Sunheri Kiran mein lined up rehta hai. Apna khyaal rakhiye, apne pyaron ka khyaal rakhiye. Have a lovely rest of your evening. I'll see you tomorrow.

जब होठों से होठ मिलते हैं तो क्या होता है? होठ से होठ मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं, मुंह बंद हो जाता है और क्या होता है? ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में बैठे हो तो भैया अपना चाय पानी का ध्यान रख लिया, टी कॉफ़ी ऑरेंज जूस वट एवर गिव्स यू दैट शाम का रिफ्रेशमेंट। किसी को होता है कि यार मैं गन्ने का जूस पीऊँगा आज शाम को। शाम जब होती है तो वैसे ही चाय वाले तो बहुत होते हैं कि चाय चाय चाय, 4 बारी चाय, 5 बारी चाय। लाइक माई मॉम यूज़ टू ड्रिंक एटलीस्ट 4 to 5 कप्स ऑफ टी, और उस चक्कर में चाय बनाने में मास्टरी हो गई। और तो कुछ नहीं बना पाया पर प्रॉपर टी बहुत बनाई भाई। Right after this track is a short commercial break. Don't go anywhere.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
2: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
1: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
3: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला। Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
8: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
9: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

यू नो किडोज, बच्चों जो सुन रहे हो मुझे, या जो सिंगल मतलब थोड़े से अभी उस वाले सिचुएशनशिप में, क्या जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपके घर में खाना बनता है ना, व्हेनेवर मॉम कुक्स फॉर यू एंड देन शी सेज फूड इज रेडी, डिनर इज रेडी, तो जब भी ये आवाज़ सुने आपको कि खाना तैयार है, बच्चों पहली आवाज़ में मत जाना, क्योंकि पहली आवाज़ उस लिए लगाई जाती है कि खाना तैयार है, चल मेरा बेटा अब प्लेटें रख दे, अब पानी रख दे भर के ग्लास, है तो मैं था जी एक्चुअली कुंभकर्ण टाइप ऑफ मैन, मतलब अपने यूथ में, यूथ तो मैं अभी भी बचपन में बोलूँगा, ठीक है, अप टिल 1920 मेरा बचपन ही चल रहा था, आज भी बचपन ही चल रहा है, बट जो वो 1920 तक वाला बचपन था उसमें ऐसा था कि स्पेशली जब गर्मियों की छुट्टियाँ होनी, खाना खाना पेलना, ब्रेकफास्ट 8-10 पराठे, और जाके बेसमेंट होती थी उसमें कंबल ऐसे डालना कि माँ देखे तो दिखू ही ना, ऐसे लगे रजाई पड़ी है, और सो जाना, फिर जब दोपहर को खाने की खुशबू आनी लंच टाइम पे, बंदे ने निकलना बेसमेंट से, मेरी माँ ने मेरा नाम रख दिया कुंभकर्ण। तो बच्चों जिनको खाने का शौक है, जब मम्मा आवाज़ लगाए आ जाओ खाना तैयार है बेटा, दैट इज़ अ ट्रिक गेम, वो चाहती हैं कि तुम आओ और उनका टेबल वगैरह सेटअप करने में हेल्प करो, वैसे तो करनी चाहिए, बट जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस, कभी कभी ज़्यादा खुश मत हो जाना, खाना बन गया। नया इन्होंने बोला है इसको, पर इसमें नया कुछ भी नहीं है, इन्होंने टोटल हमारा बेवकूफ बनाया है विद द न्यूअर वर्जन ऑफ द चुनरी। चुनरी, इट्स 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो।

आजा ना छूले मेरी चुनरी सजन, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी इस कसम। पहली वाली वर्जन बहुत बढ़िया था, शिल्पा सुष्मिता सेट्टी जी ने जो डांस किया था, ओए होए होए होए। और मतलब आई थिंक वो जो पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा रहेगा ही रहेगा, राइट? ऐसा ही होता है कुछ कुछ। ये नए गानों में हमें मज़ा तो आता है, स्पेशली जब नए बनाते हैं, बट जब रीमेक करते हैं और कह रहे हैं रीमेक है, बट सेम चीज़, थोड़ा सा टेम्पो, मतलब थोड़ा सा वो पीछे ढिक चिक, उसको क्या बोलते हैं, ट्विटर ट्वीटिंग साउंड जो होती है ना, वो बढ़ा देते हैं बस। खैर, दैट्स देयर वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग न्यू। अनिल अंबानी पुराने हैं पर आज इनका जन्मदिन है, हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपको उन्हीं की कहानी। अनिल धीरज लाल अंबानी, ये आज के दिन 4 जून 1959 को पैदा हुए, रिलायंस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड ये क्रिएट किया गया था 2006 में। इनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1959 ऑन टुडेज डेट इन उत्तर प्रदेश। आज के दिन हम विश कर रहे हैं जी मिस्टर अनिल धीरज लाल अंबानी जी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजा। एंड साथ साथ ये बता दूं कि आपके लिए गिव अवे है मेरे पास, विच इज कमिंग अप फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज। फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को में लोकेटेड है जनाब, आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी टू विन अ दाल मखनी, जो कि जबरदस्त बनाते हैं। काफ़ी घंटों बनाने के बाद उसको घोट घोट के आपके लिए दाल मखनी ट्राई करते हैं। साथ में नॉन वेजिटेरियंस के लिए है जी ढाबा स्टाइल चिकन करी। दिस इज एट द फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, एंड ये जो ऑफर है डाइन इन के लिए है। आपको सिर्फ मेरे एक अगले सवाल का जवाब देना है, जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा जी ये अगला इनाम। कॉलर नंबर 3 को पिक करूंगा, उसकी वजह क्या है मैं नहीं बता सकता, कुछ वजहें पर्सनल होती हैं। क्या नॉन द लेस बात बता देता हूँ सर, घर में बहुत मर्जी चलने नहीं देती आपको पता ही है, यहाँ तो थोड़ी चला लूँ। तो यस, कॉलर नंबर 3, हु गिव्स मी द राइट आंसर। ऑलराइट, हु आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? मार्क्स द बर्थडे ऑफ दिस लेडी हु इज नो लॉन्गर ऑन दिस अर्थ बट हैज गिवन अस सम फैंटेबुलस मूवीज, वंडरफुल स्माइल एंड अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल इंडियन सिनेमा। मैं उनके कुछ गाने लगा रहा हूँ और जब तक पहला गाना खत्म हो उसके बाद मैं कॉल्स लेनी शुरू करूँगा। सो आई एम गोना प्ले 2 सॉन्ग्स फ्रॉम हर, एंड वंस आई एम डन प्लेइंग द फर्स्ट वन, जो कि अगला लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉल्स लूँगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज इन रेफरेंस टू दीज दिस ट्रैक दैट आई एम प्लेइंग नाउ एंड द नेक्स्ट वन, हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे? This song is brought to you by Dream Home Mortgage. If you're looking for a mortgage, the best people in town are Dream Home. Give them a call, 972-245-5626, or just log on to the website, dreamhomemortgage.com. This lady is celebrating her heavenly birthday today. Who is she?

0: Beautiful, beautiful, beautiful track. And this one is Chhod Do Aanchal. Devanand Sahab, kya baat hai. Kishor Kumar Sahab ki awaaz, Asha Bhosle ji saath mein. And ye jab purane style ke gaane sunte hain aur Kishor Kumar aur Asha ji ka combination mil jaye, uske upar picturization mein Devanand Sahab aur Nutan ji mil jaye, to kya hi baat. Baat ban jaati hai ji, fantastic. I was asking you which birthday we are celebrating today.
1: Kishor Kumar.
0: Radio ka volume kam kar lijiye, apna bada lijiye. Good evening to you. Who's this caller number one? Kaun hai mere saath?
2: मैं, दिस इज रागिनी. मार्विन, आई थॉट आई एम कॉलर नंबर थ्री.
0: कोई बात नहीं रागिनी, कभी ना कभी तीसरा नंबर भी लगेगा. पहले के लिए तरसते थे लोग, आज पहला लग रहा है तो तीसरा ढूंढ रहे हैं. रागिनी, यही हमारी लाइफ की ट्रेजेडी है ना वैसे, बट कैसी हैं आप? ऑल इज वेल.
2: बस बढ़िया मार्विन, हाउ आर यू?
0: गॉड इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल. एक दिन जो जीने को मिलता है, आई थिंक उसको ही चेरिश करना चाहिए. इट्स अ बिग ब्लेसिंग टू हैव अनदर डे इन लाइफ एडेड टू यू. सो आप मेरे को नाम बता सकती हैं, बिकॉज यू आर कॉलर नंबर वन.
2: आशा भोसले
0: नहीं है, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. कॉलर नंबर टू, गुड इवनिंग टू यू. हु इज दिस?
3: माय नेम इज आशीष.
0: आशीष भाई कैसे हो?
3: अरे बहुत अच्छे हैं आशीष भाई.
0: आशीष भाई, आपको पता है आशीष का मतलब होता है ब्लेसिंग.
3: यस सर.
0: तो आशीष भाई, यस सर, क्या ब्लेसिंग करेंगे हमें, जवाब देंगे आज आप सही?
3: हाँ, इट इज बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन.
0: बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन कहते हैं आशीष भाई. बहुत बहुत शुक्रिया आशीष फॉर योर कॉल. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन कॉलर नंबर थ्री, द लकी वन. गुड इवनिंग टू यू. फनेजा, हु इज दिस? क्या हो गया भैया, नहीं बात कर रहे तो हम आगे चले जाते हैं, डब्बे बहुत हैं ट्रेन में. गुड इवनिंग फनेशिया.
4: जी, नूतन की बर्थडे है.
0: नूतन जी की बर्थडे है, आप कौन बोल रहे हैं? सरकार
4: फयाज बात कर रहा हूँ.
0: कौन?
4: फयाज.
0: फयाज, एफ ए वाई ए जी.
4: एफ ए वाई वाई ए जी.
0: एफ ए वाई वाई ए जी. अच्छा जी, फयाज क्या मतलब होता है बड़े भाई? फयाज का,
4: फयाज का मतलब होता है सखी, मतलब देने वाला, चैरिटी करने वाला.
0: चलो फिर तो आपका नंबर सेव कर लूंगा बाद में. फयाज, फयाज भाई बहुत बहुत मुबारक हो. कैन यू गो टू फ्रिस्को एंड एंजॉय दिस मील?
4: यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स.
0: ऑलराइट, ऑलराइट, यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी. कांग्रेचुलेशंस टू यू. आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर. यस, इट इज इंडीड द ब्यूटीफुल नूतन समर्थ बहल इनका नाम. 4th of June 1936 में इनका जन्म हुआ था. And she passed away on the 21st of February in the year 1991. Sab Nutan ke naam se hi jante the, but history of Indian cinema mein one of the finest actress. More than 80 films to her name. Recipient of 7 Filmfare Awards, including then record 5 Filmfare Awards for Best Actress. In 1974, Padma Shri bhi diya gaya. Kare baat inke career ki, to born in Bombay to filmmaker Kumar Sen Samarth and film actress Shobhana Samarth. Uske baad kafi roles aaye, jaise ki Seema 1955, which gave her Filmfare Award for Best Actress. Then she continued playing roles till 1960s, 70s, jaise ki film mein Sujata, Bandini, Milan, Main Tulsi Tere Aangan Ki, and some of the other films of the period include Anari, Chhela, Tere Ghar Ke Saamne, Khandan, Anurag, and Saudagar. Many, many, many beautiful movies. Today we're remembering this beautiful and talented actress, Nutan Samarth Bahl. A very happy birthday to you, heaven, to you in heaven, from the team here at Fun Asia. Ek aur khoobsurat sa gaana, उन ही की याद में. Here we go.

0: In 1990s, Nuzan started playing character roles and continued working until before her death. Or ज़्यादातर roles mother के roles किए इन्होंने, जैसे कि साजन की सहेली 1981, मेरी जंग 1985 and नाम. And her performance in मेरी जंग especially earned her a sixth and final Filmfare Award in the Best Supporting Actress category. She was married to Naval Lieutenant Commander Rajneesh Behal from 1859 until her death from breast cancer in 1999. Their only child, son Monish Behal. We're taking a short commercial break. You guys don't go anywhere. I'll be yun gaya aur yun wapas aaya jhat se pehle.
1: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodiyalcpa.com.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी.
18: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
19: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
20: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
21: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त, only on Fun Asia Radio.

Beautiful voice of Khan Saab with that track, jiska naam hai ji Jaan Se Guzarte Hain. Dhurandhar, the movie The Revenge, and all of Dhurandhar was fantastic. Jaan Se Toh Woh Bhi Guzarte Hain, jo India mein apni biwiyon ke saath sabzi mandi jaate hain. Yahan pe toh aasan hai, sabzi matlab rate nahi puchna padta na. Wahan pe aksar kya hota hai, abhi bhi main gaya tha toh maine phir live dekha ki ladies jab sabzi leti hai na, to haath woh laga rahi hoti hai karele ko aur haath mein karela hota hai. Sabzi wale se poochti hain bhindi kaise di hai. हाँ जी, तो करेला हाथ में, रेट भिंडी का, फिर कहती है काम करो, दो किलो ना आलू पैक कर दो. यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो. कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको मिला था जी? फयाज भाई, जिन्होंने जीता गिव अवे फ्रॉम फ्लेवर लाउंज राइट बिफोर वी वेंट टू द लास्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय सैल्स हॉट चिकन. और बता दूं कि अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, स्पेशली इफ यू लाइक दैट नेशवल हॉट चिकन, स्पाइसी चिकन, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑफर आ रहा है, विच इज कमिंग फ्रॉम सैल्स हॉट चिकन. पहले तो बता दूं, सैल्स चिकन इज लोकेटेड इन रिचर्डसन, एंड ये आपके लिए एक बहुत अच्छा डील लेके आया है. कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं मिर्ची इतनी खाता हूँ, इतनी खाता हूँ, तो चलो आपके लिए चैलेंज है जनाब. आपके पास 10 मिनट होंगे एंड यू हैव टू फिनिश 3 ऑफ देयर जम्बो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स. आपको साथ में एक गिलास दूध दिया जाएगा जरूर, पर आप अपने टेंडर्स को उस दूध में डिप नहीं कर सकते. ठीक है जी, 10 मिनट, 3 जंबो टेंडर्स फिनिश करने हैं, विच इज एक्स्ट्रा हॉट एंड नो डिपिंग इन द मिल्क अलाउड. यस, यू कैन सिप ऑन द मिल्क. प्राइजेस क्या मिलेंगे? ट्रस्ट मी, प्राइजेस बड़े जबरदस्त दे रहे हैं यार. इफ यू फिनिश जस्ट 1 जंबो टेंडर, आप चिकन आउट कर गए पहले ही, आपने कहा 3 तक तो मैं नहीं जाऊंगा, एक जरूर खा लूंगा. अगर आपने एक भी टेंडर फिनिश कर लिया, आपको एक फ्री सैंडविच मिलेगा फॉर 7 डेज. इफ यू फिनिश 2 जंबो टेंडर्स, यू गेट फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज. And if you conquer all 3 inferno tenders, बाद में आपको घर में तो पता लगेगा ही, बट उसके साथ साथ you will get a free sandwich for 30 days. जी हाँ, 30 दिन तक free sandwich and some extra bonus in your bathroom. Saturday, June 6th, 4 PM, Sal's Chicken, Richardson में ये contest है. Just joking, but अगर आप really spicy खा सकते हैं, I think I can maybe go to medium second level of spice, but not the inferno. But I am sure that some of you are out there who can definitely take the heat. So, once again, date hai 6 June, which is this Saturday, yani ki parso, dopahar ko 4 baje aapko pahunchna hai Sal's Chicken and get yourself into this contest. Ek jumbo tender spicy khatam karne pe, 1 free sandwich for 7 days. 2 jumbo tenders if you finish, you get free sandwich for 15 days. And if you finish all 3, you get a grand prize, which is free sandwich for 30 consecutive days. Aaj ke din itihas mein kuch aur bhi hua tha. Kya hua tha? Batata hoon.

0: On today's date in history, that is the 4th of June, this track was finally released by the American musician Bruce Springsteen, born in the USA, which became one of his defining works and a track that definitely resonated with the entire United States. Critically acclaimed 7th studio album and iconic title track by American singer-songwriter Bruce Springsteen's, released on today's date, June 4th, the year was 1984. Yani ki mere paida hone ke 3 mahine baad ye gana aaya. Despite its upbeat stadium rocking production and driving synthesizer riff, the song is actually a somber protest anthem criticizing the treatment of Vietnam War veterans. But nonetheless, this is a historic track, and I wanted to share a part of history that it was actually made and released today. Released today, 4th of June 1984. Now we're talking about America, we're talking about being born in America. We're also going to talk about some of the problems that we face in America, and one of that problem is of course URA, jo aapke liye problem ko solve karte hain. It's a debt consolidation company, because the problem that we get into, unforeseen circumstances ho jate hain, kabhi life mein koi emergency aa jati hai, be that here, be that in India. Certain medical issues can come along, and that could get your debt to pile up. But when we have somebody on our side who can guide us how to get out of debt, I think wo sabse zyada matter karta hai. Kyunki hum jab debt ko sochte hain ya dekhte hain, हमें सही में ये पता नहीं लगता कि इज़ देर अ रियली ईजियर वे टू गेट आउट ऑफ इट, क्या वो मंथली पेमेंट्स करने से हमारा सोल्यूशन होगा. सो वाई डोंट वी टॉक टू द एक्सपर्ट्स. लेट्स वेलकम अमन ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेशिया फ्रॉम उरा डेट. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: गुड इवनिंग फाइनेशिया सुनने वाले सभी लिस्टनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. महीना शुरू हुआ है, इस महीने की शुरुआत में ही आपको चौकन्ना कर दूं, याद दिला दूं कि इस महीने वो गलती मत कीजिएगा जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने या उससे पिछले साल की थी, यानी कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट जो आपने भरी थी. क्रेडिट कार्ड कभी भी मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरता, क्योंकि उसमें तो आप 40% इंटरेस्ट भरते हैं. इतना इंटरेस्ट भरते हैं कि उससे क्रेडिट कार्ड वालों की जेबें भरती हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड का डेट नीचे नहीं जाता. तो अगर आप चाहते हैं और परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड हिल नहीं रहे हैं, पे ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो उरा को कॉल कीजिए. उरा एक डेट सेटलमेंट कंपनी है जो आपके सारे क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट बना देगी. उन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बन जाएगी, चाहे वो स्टोर के हों, बिजनेस के हों, पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स हों, आपके या आपकी वाइफ के क्रेडिट कार्ड ज्वाइंट हों, उन सबकी एक पेमेंट बन जाएगी, ताकि आपकी मंथली मैनेजमेंट ईजी हो जाए कि एक ही पेमेंट करनी है महीने में. तो आप उसकी मंथली पेमेंट कीजिए और आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा, आधे से ज्यादा तो कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्जा, बल्कि अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन भी है जो रेनोवेशन के लिए या इंडिया या यूरोप की ट्रिप के लिए आपने ले रखा है, या फिर अगर आपने कोई गाड़ी का लोन लिया जो गाड़ी टोटल हो गई या गाड़ी रिपोजेस हो गई, जिसको पंजाबी में कहते ना रिपो हो गई, अगर वो रिपो हो गई है तो गाड़ी अगर बैंक उठा के ले गए लेकिन लोन तो स्टिल आपके सर पर है, उसको भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं आधे से ज्यादा, तो आप उरा से बात कीजिए. तो इसलिए कह रहा हूं कि मिनिमम पेमेंट करने से पहले इस महीने जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या मिनिमम पेमेंट के पर्सनल लोन की स्टेटमेंट आएगी, उसको एक बार भरने से पहले उरा को कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपका कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए. आपको मैं अपना पर्सनल नंबर भी देता हूं, आप चाहे तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-9914, 1-888-9914. या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 916-776-3555, 916-776-3555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org.

मीन्स कि अगले 3 दिन मैं होऊंगा जी अपने अपने डिफरेंट कामों में, कुछ चिल मारेंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, खाना पीना, एंड ऑफ कोर्स सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली. मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आई लव हैविंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, एंड स्पेशली जब वीकेंड पे कुछ ना करना हो, वो सबसे बढ़िया करना होता है जिसमें कुछ भी ना करना हो. खैर, आपको एक बिंदास सी न्यूज़ ये भी बता दूं कि विशाल अनशेखर इज़ कमिंग टू टाउन 12th of this month. जी हाँ, 12 जून को आपके लिए विशाल अनशेखर आगर भी परफॉर्मिंग लाइव एट द कर्टिस कलवेल सेंटर. आपको ये इवेंट बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए यार, बिकॉज विशाल अनशेखर एक्चुअली हैव गिवन अस सम वंडरफुल वंडरफुल ट्रैक्स. यू नो, बॉलीवुड के अगर आप फैन हो बॉलीवुड म्यूजिक के, आपकी प्लेलिस्ट में ज़रूर बहुत सारे गाने होंगे जो कि विशाल अनशेखर के होंगे. द डुओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूअर to Dallas on Sunday, July 12th at the Curtis Culwell Center. ये अगले संडे होने वाला है इवेंट, सो अपना कैलेंडर ऑलरेडी मार्क कर लीजिए. एक्चुअली अगले संडे नहीं, अगले संडे जून है भाई, जून में नहीं, जुलाई 12th है. There's still a month to go, so you have time to get your tickets. Tickets कहाँ पे मिलेंगी आपको? Of course, cashpatelproductions.com. That's K-A-S-H, patelproductions.com. Cash with a K. cashpatelproductions.com. Get all of your tickets there. 12th of July, Sunday. अभी भी time है, अच्छी सीटें आपको मिल जाएंगी. And some exciting news for you guys, Vishal Dadlani himself will be joining us live on Fun Asia Radio next Monday. Mere show mein shaam ko 5:05, which is on the 8th of June. So do not miss that interview and definitely don't miss that concert. Vishal and Shekhar live in Dallas. The next two songs are dedicated to this duo, Vishal and Shekhar. And I think both of these songs are so, so, so lovely.

यू नो, हम देशियों के घर चाहे जितने मर्जी बड़े हों, बड़े बड़े घर, पर जब तक हमारे घर की फ्रिज, अलमारियाँ, इसके ऊपर सामान ना रखा हो और कुछ पीछे ना गिरता रहे, तब तक मजा नहीं आता, फीलिंग नहीं आती ना। और एक हमारे घर में हमेशा वो ड्रॉअर होता है, देखो लिफाफों वाला तो सबको पता है ना, जो भी पॉलीथिन आते हैं हम एक जगह रख लेते हैं, किसी ने डस्टबिन बना के रखा हुआ है, मतलब पोक वाला, उसमें से ऐसे करो करके तो नया पॉलीथिन निकल आता है। उसके अलावा एक और ड्रॉअर होता है हमारे घर में जिसमें बेफजूल की सारी चीज़ें होती हैं, कोई तार, कोई चार्जर, कोई बैटरी पैक, कैंडल्स, थोड़ा बहुत जलाने के माचिस मुचिस, ये वो, टूथपिक और वो फ़ोन पिकर, फ़ोन कनेक्टर्स, ये हर घर में एक दराज ज़रूर पाया जाता है। अच्छा, कमाल की बात है, जब कुछ और कुछ ना मिले और एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए हो तो वो उसी कचरे वाले ड्रॉर में ही मिलता है भैया। This part of the show is brought to you by AG FinTax. If you have not done your taxes yet, taxes करवाइए और साथ साथ उसके taxes को समझिए भी कि if you're a high income maker, if you're a high net worth individual, be that through your business or from your job, there are many things that you can do to get away from some of your tax liabilities in a legal way. And if you have the right CPA, if you kept your books right, then this can be made easier. Anyway, I'm not the guy, the people are. AG FinTax, give them a call or move on, get on to the website agfintax.com. AGOG, लो जी सुनो जी, करते हैं ये, वो आप भी करवा लो जी, आपके टैक्सेस का काम चकाचक हो जाएगा। All you have to do is visit the website agfintax.com. I was telling you कि मेरे पास एक giveaway है from Fun Pizza Kitchen and this is in the Colony and in Frisco, but this offer is coming from Frisco location. आपको of course उनके पिज़्ज़ों के बारे में पता है, चाहे अचारी पनीर खाएं, नहीं पता है तो बता देता हूँ, if you haven't had their अचारी पनीर पिज़्ज़ा and if you're a vegetarian, go get that and tell me later. थैंक मी लेटर। तंदूरी चिकन पिज्ज़ा खाइए या वहाँ की गार्लिक ब्रेड्स खाइए और पिज्ज़ा को ना प्लीज़ वहीं इंजॉय किया करें। द मोमेंट इट गेट्स आउट ऑफ द ओवन, दैट्स द रियल वे टू ईट योर पिज्ज़ा। $10 का गिफ्ट सर्टिफिकेट आप मेरे से जीत सकते हैं। मैं पूछूंगा जी आपसे एक सवाल, एंड इफ़ यू गिव मी द राइट आंसर, यू विल गेट योर सेल्फ दिस गिव अवे फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन, विच इज़ अ $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु इज़ डोमिनेंट इन साउथ इंडिया, बट शी हैज़ डन मैनी रोल्स इन हिंदी फिल्म एज वेल। तो अभी मैंने सवाल पूछा नहीं है, बट मैं सवाल पूछने लगा हूँ आपसे कि किसके बर्थडे की बात कर रहा हूँ। इनका जो नाम है जी, या बर्थ नेम है, दैट इज़ अय्यर। अय्यर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड मलयालम फिल्म्स में काम कर चुकी हैं इंक्लूडिंग हिंदी। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ एंड अ तमिल नाडु स्टेट फिल्म अवार्ड एज वेल। अगर मैं इनकी कुछ तमिल फिल्मों की बात करूँ या तेलुगु फिल्मों की बात करूँ, राम, पुथियु मुकाम रावना, पचीते द सेंट, पूर्व थवीरन, एंड देन इन द हिंदी साइड we have Jawan, Article 370, an officer on duty. I'm going to play a song from one of her movies. You have to tell me which actress I am talking about in reference to this song. 972-235-5555 is the number to the studio.

0: All right, let's see. कोई कॉल कर रहा था बड़ी देर से, बट कोई बात नहीं, आ गए हैं दोबारा, इनसे ही बात कर लेते हैं हम. गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
1: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग. लकमोल मैन, गुड इवनिंग करके निकल गया मैन, ये तो डिकरा ठीक नहीं है. गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
2: हाय मार्विन, जीत हियर.
0: जीत, आज जीत के ही जाओगे?
2: यस.
0: जीत भाई, कैसे हैं, सब ठीक ठाक?
2: बस बढ़िया एकदम.
0: चलो बस बढ़िया है, तो स्कूटर भी बढ़िया कर लेंगे हम घर जाके. ये बताओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ.
2: नयनतारा.
0: नयनतारा, नयनतारा का आज जन्मदिन नहीं है बड़े भैया, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग. जीत बाबू कौन है और हमारे साथ? गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस, कौन बोल रहे?
1: हाय, दिस इज पूर्ति है.
0: पूर्ति जी कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं, लोग कहते हैं कि पापा मम्मी कहते थे यू आर अ गुड बॉय, सो आई विल जस्ट स्टिक टू दैट. आप बताएं पूर्ति, डू यू नो व्हिच एक्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट? पूर्ति, यू आर देयर? हेलो पूर्ति जी, कैन यू हियर मी? नहीं सुन रही हैं पूर्ति जी, तो आगे तो जाना पड़ेगा. गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
3: हाय, दिस इज अमित.
0: अमित भाई कैसे हैं? अमित सब ठीक?
3: बढ़िया एकदम, चकाचक सर.
0: चकाचक, मैं चकाचक, वो भी चकाचक. अब ये बताइए इस एक्ट्रेस का नाम जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ.
3: प्रियामणि वासुदेव अय्यर.
0: प्रियामणि वासुदेव अय्यर, क्या बात है, गैस मारा है कि पता था?
3: नहीं नहीं, सर्च किया.
0: सर्च किया, वाओ मैन, यू आर वेरी गुड. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो आपकी है. All right, hold the line for me, brother. Yes, it is Priya Mani celebrating her birthday today. Stay online. I'll take your information off the air. Born and raised in Bangalore, Karnataka, to a Tamil Palakkad Iyer family. Of course, बहुत सारी फिल्में, बहुत लंबा करियर इनका साउथ में रहा, but in the Bollywood side, of course, the Jawan movie, Article 370, an officer on duty, definitely showed her skills to the northern side as well. A very happy birthday to Miss Priya Mani from the team here at Funasia. And from Banda Bindas, Marvin Das.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: के टू ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
9: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
9: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
2: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
14: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
16: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
17: प्लान या होप?
16: मतलब?
17: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
16: ओके, तो मेरा वाला होप है।
17: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
16: क्यों?
17: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
2: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
18: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
19: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

A voice that I was fan of, Siripathi Panditthar Dulia Bala Subramaniam, yani ki SB, SPB aur Balu, bade pyar se inko log bulate the. 4th of June, aaj hi ke din, in the year 1946, this wonderful voice was born in Madip, kaunsa? Madras Presidency us time, yani ki मद्रास में निल्लोर डिस्ट्रिक्ट जगह पड़ती है जी, और जगह का नाम था कोनेटमापिटा, कोनेटमापिटा, होपफुली आई सेड इट राइट, बट नॉनदलेस एक प्यारी सी आवाज़, जब मैं छोटा था तो इनकी आवाज़ सुननी शुरू करी एंड आई जस्ट गॉट ग्लूड टू द सिंपलिसिटी ऑफ हिज वॉइस. आई थिंक इनकी आवाज़ में एक वो इनोसेंस है, एक सिंपलिसिटी है दैट सिंपली कैचेज योर ईयर्स एंड इट नेवर लीव्स. एंड आज के दिन इनको याद कर रहा हूँ बिकॉज इन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने हमें दिए हैं एंड वन ऑफ देम यू जस्ट हर्ड. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय हेल टू नेल. डैमेज अगर आपकी रूफ हुई है पिछले साल ड्यूरिंग द हेल, देन दिस इज योर चांस टू गेट इट इंस्पेक्टेड. बहुत ही अच्छे लोग हैं निजार अहमद साहब, उनकी टीम और उनकी कंपनी 5-star रेटेड है ऑन गूगल, सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट दे विल डू वन ऑफ द बेस्ट वर्क. अगर आपने अभी तक अपनी रूफ चेक नहीं करवाई है बिफोर द हेल हिट्स दिस सीजन, बिकॉज अगर छोटा सा भी डैमेज है वो बड़ा हो सकता है एंड यू कैन गेट द इंस्पेक्शन डन एब्सोल्युटली फ्री. फ्री इंस्पेक्शन, क्लेम असिस्टेंस भी दिलवाएंगे इफ देर इज डैमेज टू योर रूफ. चेक आउट द 5-star गूगल रिव्यूज जैसे कि मैंने कहा, एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू टाइप इन गूगल हेल HAIL नंबर 2 एंड नेल. हेल टू नेल इज द नेम ऑफ द कंपनी. गिव निसार भाई अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, 682-561-9795, और यू कैन टेक दिस नंबर बाय कॉलिंग अस. साथ साथ ये बता दूं कि रूफ्स ही नहीं, दे आर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट कंपनी एंड दे आर ऑल्सो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोडक्ट की रीमॉडलिंग में भी आपकी मदद करते हैं. पेंटिंग हो, रिपेयर्स हो, कॉन्क्रीट वर्क हो, दे विल टेक केयर ऑफ इट ऑल. गिव देम अ कॉल. वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑल्सो कमिंग अप ऑन द 21st of June, और उसके लिए फनेजिया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है कि इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट विद फनेजिया इन वर्ल्ड म्यूजिक डे, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू FunAsia.net. वहां पे आपको वर्ल्ड म्यूजिक डे का एक टैब दिखेगा एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्टेस्ट. करना क्या है कि आप वर्ल्ड म्यूजिक डे के टैब पे जब फनेशिया पे जाएंगे, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें डिफरेंट जॉनराज ऑफ म्यूजिक होंगे जैसे कि रॉक, पॉप, सूफी, और इसमें आपने अपने मन पसंदीदा गाने डालने हैं. द मोमेंट योर सॉन्ग गेट सिलेक्टेड विच इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन द 21st of June, 21 जून को जो गाने चलाए जाएंगे स्टेशन पे वो उसी लिस्ट में से चलाए जाएंगे जो आप जैसे लोगों ने भरी होगी, और अगर आपका गाना सिलेक्ट हुआ तो आपको मिलेगा फनेशिया की तरफ से एक धांसू इनाम. ऑल यू हैव टू डू वंस अगेन इज गिव अस योर टैलेंट ऑफ म्यूजिक, गिव अस योर फ्लेवर ऑफ म्यूजिक बाय टेलिंग अस व्हाट सॉन्ग्स यू लाइक इन डिफरेंट जॉनर्स. अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एट funasia.net. वर्ल्ड म्यूजिक डे का टैब है, उस फॉर्म को आप भरेंगे एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू. एंड when you do that, your song gets selected, you're getting a prize as well. With that, it is time for me to say bye-bye, adios. Mere baad aayengi aaj Ippi, who's going to be entertaining you from 7 to 10. Ippi the Hippie, she's new, she's vibrant, and she needs all of your support. Agar aap pehle sun chuke hain, then you know what she brings. If you haven't heard her, I recommend that you do listen to her show. 7 to 10 deengi aapka saath. And give her all the support that you can. Sune unki baatein, unke gaane sune, unko request kare gaano ki. And also call her and, just show her appreciation. Mera ho gaya ji waqt Tata ka. दुआओं में याद रखिएगा जैसे कि मैं रखूंगा, क्योंकि अब मैं आपको 3 दिन बाद मिलूंगा. फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आई एम यूजुअली नॉट ऑन द एयरवेज ऑफ फनेशिया. अनटिल मंडे, यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मेक श्योर दैट योर लव्ड वंस हु रिलाई ऑन यू आर रिलाइंग ऑन अ स्ट्रांग इंडिविजुअल. सो योर हेल्थ एंड योर वेल्थ एंड योर प्रोस्पेरिटी एंड योर हैप्पीनेस इज ऑल इन योर हैंड. आपको अपनी खुशी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, रेस्ट विल फॉल इन प्लेस. आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है, रेस्ट विल फॉल इन प्लेस एज वेल. With that, it is good night. Adios. See you Monday.